0: फिर नुतफे का लोथड़ा बनाया, फिर लोथड़े की बोटी बनाई, फिर बोटी की हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों पर गोश्त पोश्त चढ़ाया, फिर उसको नई सूरत में बना दिया। तो खुदा जो सबसे बेहतर बनाने वाला बड़ा बाबरकत है।
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيِّتُونَ
0: फिर उसके बाद तुम मर जाते हो।
1: ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ
0: फिर कयामत के रोज उठा खड़े किए जाओगे।
1: وَلَقَدْ خَلَقْنَا

0: और तुम्हारे लिए चार पायों में भी इबरत और निशानी है कि जो उनके पेटों में है उससे हम तुम्हें दूध पिलाते हैं, और तुम्हारे लिए उनमें और भी बहुत से फायदे हैं, और बाज को तुम खाते भी हो।
1: وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ
0: اور ان پر اور کشتیوں پر تم سوار ہوتے ہو
1: وَلَقَدْ

क्या ये कहते हैं कि इसे सौदा है? नहीं, बल्कि वो उनके पास हक को लेकर आए हैं और उनमें से अक्सर हक को नापसंद करते हैं।

0: जी ये तो सिर्फ अगले लोगों की कहानियां हैं।
1: قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ
0: कहो कि अगर तुम जानते हो तो बताओ कि जमीन और जो कुछ जमीन में है सब किसका माल है।
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
0: झट बोल उठेंगे कि खुदा का, कहो कि फिर तुम सोचते क्यों नहीं।
1: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ
0: इनसे पूछो कि सात आसमानों का कौन मालिक है और अर्श अजीम का कौन मालिक है।
1: سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ
0: बेसाख्ता कह देंगे कि ये चीजें खुदा ही की हैं, कहो कि फिर तुम डरते क्यों नहीं।
1: قُلْ مَنْ

ताकि मैं उसमें जिसे छोड़ आया हूं नेक काम किया करूं। हरगिज नहीं, ये एक ऐसी बात है कि वो उसे जबान से कह रहा होगा और उसके साथ अमल नहीं होगा, और उनके पीछे बरजख है जहां वो उस दिन तक के दोबारा उठाए जाएंगे रहेंगे।

0: फिर जब सूर फूंका जाएगा तो न तो उनमें कराबतें रहेंगी और न एक दूसरे को पूछेंगे।
1: فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ
0: तो जिनके अमलों के बोझ भारी होंगे वो फलाह पाने वाले हैं।
1: وَمَنْ خَفَّتْ

मोमिनों, अपने घरों के सिवा दूसरे लोगों के घरों में घर वालों से इजाजत लिए और उनको सलाम किए बगैर दाखिल न हुआ करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर है। और हम ये नसीहत इसलिए करते हैं कि शायद तुम याद रखो।

अगर तुम घर में किसी को मौजूद न पाओ तो जब तक तुमको इजाजत न दी जाए उसमें मत दाखिल हो, और अगर ये कहा जाए कि इस वक्त लौट जाओ तो लौट जाया करो। ये तुम्हारे लिए बड़ी पाकीजगी की बात है, और जो काम तुम करते हो खुदा सब जानता है।

0: क्या तुमने नहीं देखा कि खुदा ही बादलों को चलाता है, फिर उनको आपस में मिला देता है, फिर उनको तय बतय कर देता है। फिर तुम देखते हो कि बादल में से मैं निकलकर बरस रहा है और आसमान में जो ओलों के पहाड़ हैं उनसे ओले नाजिल करता है, तो जिस पर चाहता है उसको बरसा देता है और जिससे चाहता है हटा रखता है। और बादल में जो बिजली होती है उसकी चमक आंखों को खीरा करके बिनाई को उचके लिए जाती है।
1: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار
0: خدا ہی رات اور دن کو بدلتا رہتا ہے، اہل بصارت کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے۔

0: वो कहेंगे तू पाक है, हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते, लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी, यहाँ तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे।
1: فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا

0: रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए। यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए
1: सैयद अल अवलीन वल आखिरीन।
0: FM 92.6। रूह की ताजगी का सफर तय कीजिए यूसीपी की दुनिया के साथ, तो सुनते रहिए FM 92.6।

वेलकम बैक। सुलह की दिफात तय हो गई। जो दिफात ये थी, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस साल मक्का में दाखिल हुए बगैर वापस जाएंगे। अगले साल मुसलमान मक्का आएंगे और 3 रोज कयाम करेंगे। उनके साथ सवार का हथियार होगा, मयानों में तलवारें होंगी और उनसे किसी किस्म का तारुज नहीं किया जाएगा। 10 साल तक फरीकैन जंग बंदी रखेंगे। इस अरसे में लोग मामून रहेंगे, कोई किसी पर हाथ नहीं उठाएगा। जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा, और जो कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल होना चाहे दाखिल हो सकेगा। जो कबीला जिस फरीक में शामिल होगा उस फरीक का एक जुज समझा जाएगा। लिहाजा ऐसे किसी कबीले पर ज्यादती हुई तो खुद उस फरीक पर ज्यादती मुतसव्वर होगी। कुरैश का जो आदमी अपने सरपरस्त की इजाजत के बगैर यानी भाग कर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाएगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे वापस कर देंगे। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से जो शख्स पनाह की गर्ज से भागकर कुरैश के पास आएगा, कुरैश उसे वापस ना करेंगे। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया कि तहरीर लिख दें, और ये इमला कराया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पर सुहेल ने कहा, हम नहीं जानते रहमान क्या है, आप यूं लिखिए बिस्मिकल्लाहुम, अल्लाह तेरे नाम से। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को हुक्म दिया कि यही लिखो। उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इमला कराया। ये वो बात है जिस पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसालहत की। इस पर सुहेल ने कहा, अगर हम जानते कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो फिर हम ना तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बैतुल्लाह से रोकते और ना जंग करते। लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखवाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह का रसूल हूँ अगरचे तुम लोग झुटलाओ। फिर हजरत अली को हुक्म दिया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखें और लफ्ज़ रसूलुल्लाह मिटा दें। लेकिन हजरत अली ने गवारा ना किया कि इस लफ्ज़ को मिटाएं, लिहाजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथ से मिटा दिया। उसके बाद पूरी दस्तावेज लिखी गई। फिर जब सुलह मुकम्मल हो चुकी तो बनु खुजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद पैमान में दाखिल हो गए। ये लोग दर हकीकत अब्दुल मुत्तलिब के जमाने से ही बनू हाशिम के हलीफ थे, जैसा कि आगाज किताब में गुजर चुका है। इसलिए अहदो पैमान में दाखिला दर हकीकत उसी कदीम हलफ की ताकीद और पुख्तगी थी। दूसरी तरफ बनू बकर कुरैश के अहदो पैमान में दाखिल हो गए। नविश्ता सुलह अभी लिखा ही जा रहा था कि सुहेल के बेटे अबू जुंदल अपनी बेड़ियां घसीटते आ पहुंचे। वो जेरी मक्का से निकल कर आए थे। उन्होंने यहां पहुंचकर अपने आप को मुसलमानों के दरमियान डाल दिया। सुहेल ने कहा, यह पहला शख्स है जिसके मुतल्लिक मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मामला करता हूं, क्या आप इसे वापस कर दें? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो हमने नविश्ता मुकम्मल नहीं किया है। उसने कहा, तब मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी बात पर सुलह का कोई मामला ही ना करूंगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा तो तुम इसको मेरी खातिर छोड़ दो। उसने कहा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर भी नहीं छोड़ सकता। आपने फरमाया, नहीं नहीं इतना तो कर ही दो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं कर सकता। फिर सुहेल ने अबू जंदल के चेहरे पर चांटा रसीद किया और फिर मुशरिकीन की तरफ वापस करने के लिए उनके कुर्ते का गला पकड़कर घसीटा। अबू जंदल जोर जोर से चीख कर कहने लगे, मुसलमानों क्या मैं मुशरिकीन की तरफ वापस किया जाऊंगा कि वो मुझे मेरे दीन के मुतल्लिक फितने में डालें? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जिंदल सब्र करो और इसे बायस सवाब समझो। अल्लाह तुम्हारे लिए और तुम्हारे साथ जो दूसरे कमजोर मुसलमान हैं उन सब के लिए कुशादगी और पनाह की जगह बनाएगा। हमने कुरैश से सुलह कर ली है, हमने उनको और उन्होंने हमको इस पर अल्लाह का अहद दिया है, इसलिए हम बदअहदी नहीं कर सकते। इसके बाद हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु उछल कर अबू जिंदल के पास पहुंचे। वो उनके पहलू में चलते जा रहे थे और कहते जा रहे थे, अबू जंदल सब्र करो, ये लोग मुशरिक हैं, इनका खून तो बस कुत्ते का खून है। और साथ ही साथ अपनी तलवार का दस्ता भी उनके करीब करते जा रहे थे। हजरत उमर का बयान है कि मुझे उम्मीद थी कि वो तलवार लेकर अपने बाप सुहेल को उड़ा देंगे, लेकिन उन्होंने अपने बाप के बारे में बुखल से काम लिया और मुआहिदा सुलह नाफिस हो गया। सामईन, वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का। वक्फे में हम सुनेंगे नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
وقفے کے بعد نشست کو یہیں سے آگے لے کے چلیں گے۔

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: Magical Point 6.
3: बहुत हो गया, बहुत लड़ लिया, बस अब हमें और तुम्हें मिलकर आगे बढ़ना है।

0: तो सुनते रहिए FM 92.6 UCT की दुनिया।
1: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार और तकरार, सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास, मस्ती के पास, सिर्फ FM 92.6 UCT की दुनिया।

आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना।
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया। आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन, ओनली ऑन वन प्लेस। देन स्टे ट्यून्ड टू 92.6।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट आमना महमूद, मुखातिब हूं आपसे FM 92.6 UCP की दुनिया से। लिसनर्स, आज हम एक अहम और दौरे हाजिर के मुतालिक दिलचस्प मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं। उसका नाम है प्रिसीजन एग्रीकल्चर। ये सिर्फ एक फार्मिंग टेक्निक नहीं, बल्कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनकलाबी सोच है जो ज़राअत के तरीकों को बेहतरीन और मुख्तसर बना रही है। मुख्तलिफ टूल के जरिए फार्मर्स अपनी फसलों की बेहतरी, जमीन की सेहत और रिसोर्सेज को बेहतरीन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन इस नए तरीके के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का एक्सेस, कॉस्ट और डिजिटल स्किल्स की जरूरत, ताकि इस निज़ाम का पूरा फायदा उठाया जा सके। आज के इस शो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर असल में क्या है, किस तरह से ये ट्रेडिशनल फार्मिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और किस तरह ये मुस्तकबिल में सस्टेनेबल और प्रॉफिटेबल फार्मिंग के लिए राह हमवार कर रहा है। हमारे साथ इस अहम गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं मिस राबिया महमूद, जो एग्रीकल्चर और स्मार्ट फार्मिंग के बारे में दिलचस्प हकाइक से हमें आगाह करेंगी। आइए अपनी गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस।
3: वालेकुम अस्सलाम,
2: कैसी हैं आप?
3: जी अल्हम्दुलिल्लाह।
2: वक्त जाया किए बगैर हम अपने मौजू की तरफ आते हैं। सबसे पहले तो आप सुनने वालों को बताएं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर है क्या और ये ट्रेडिशनल फार्मिंग से किस तरह मुख्तलिफ है।
3: ओके, प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जैसे मीन्स एग्रीकल्चर जो है किसी भी इकोनॉमी का या किसी भी कंट्री का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर होता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें तो एग्रीकल्चर जो है, एग्रीकल्चर डोमेन जो है, हमारे GDP 23% उसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। और 80% ऑफ द पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स डिपेंड्स अपॉन द एग्रीकल्चर डोमेन, एग्रीकल्चर डोमेन से वो डिपेंड कर रही है। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर एक हमारे पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है कि हम ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर टेक्नोलॉजीज और टूल्स को यूज करते हुए कैसे हम अपनी फार्मिंग को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, या फार्मिंग प्रोसेस है उसको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, या किस तरह हम उसको जो है एफिशिएंट बना सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स को। फॉर एग्जांपल, जैसे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं एग्रीकल्चर, वो फार्मर्स के एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड कर रही है, ठीक है। और जब हम देखते हैं कि लाइक 10 ईयर्स बैक और 20 ईयर्स बैक, जो एग्रीकल्चर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती थी वो नेशनल टेलीविजन के थ्रू फार्मर्स को बताई जाती थी। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कोई फ्लड की प्रेडिक्शन है या किसी तरह के भी पेस्ट इन्फेक्शन आने वाला है, तो यूजिंग टेलीविजन हम उनको जो है वो आगाह करते थे फार्मर्स को। बट नाउ आर डेज प्रिसीजन एग्रीकल्चर क्या है कि हमारे पास लेटेस्ट टूल्स और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल है, जिससे कि फार्मर्स को अवेयर किया जाता है। और इसका जो अब प्रिसीजन एग्रीकल्चर की जो एजुकेशन है वो फार्मर्स तक पहुंचाई जा रही है यूजिंग टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज। नॉट ओनली दिस इज इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, बट रियल टाइम फील्ड्स के अंदर हम उन टूल्स और टेक्नोलॉजीज को यूटिलाइज करते हुए जो है वो अपनी फार्मिंग को ऑप्टिमाइज बना सकते हैं, या कह लें कि जो भी हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप है उसकी ग्रोथ और प्रोडक्शन को हम जो है ना वो इंक्रीज करवा सकते हैं। तो प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो वर्ड है वो 1980s में यूज हुआ था, जब हमारे पास GPS टेक्नोलॉजी का यूज आया। GPS टेक्नोलॉजी क्या करती है, लाइक अगर हम गूगल मैप्स यूज करते हैं तो हमारी करंट लोकेशन बताती है। अब पहला सवाल, जब भी हम टेक्नोलॉजी का वर्ड यूज करते हैं तो हमारे जहन में या रियली भी एसोसिएट जो है वो तीन चीजें हैं, द हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और उसके यूजर्स जो उसको इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मिंग से रिलेटेड पहला सवाल किसी के भी जहन में ये आएगा कि अगर हम इसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं या अगर हम इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, तो सबसे पहला सवाल ये है कि जो हमारी लैंड है वो कंप्यूटर में कहाँ पे लाई कर रही है। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी अर्थ है वो लोंगिट्यूड और लैटिट्यूड में डिवाइड है, तो जीपीएस हमें क्या बताता है कि आपका जो फील्ड है वो करंटली किस लोकेशन पे है, अगर हमने ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाना है या कोई भी टूल्स एंड टेक्निक्स यूज करनी है। तो जीपीएस का कॉन्सेप्ट से प्रिसीजन एग्रीकल्चर का जो है वो आगाज हुआ, और इसके अंदर डिफरेंट टूल्स और टेक्नोलॉजीज जो यूज होती हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे।
2: हमारे सुनने वालों को टेक्नोलॉजीज के बारे में बता दें, क्योंकि अभी आप बार बार जिक्र कर रही थी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में टूल्स और टेक्नोलॉजीज का यूज बहुत ज्यादा है, तो आप इसके बारे में भी थोड़ा हमें अवेयर कर दें।
3: फर्स्ट ऑफ ऑल हर कोई इंसान जो है वो आजकल गूगल मैप्स तो यूज कर रहा है। गूगल मैप्स इज एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो अर्थ है इट इज रजिस्टर्ड ऑन सम सॉफ्टवेयर, ठीक है, जिसको कि हम जीआईएस बोलते हैं, जियोग्राफिकल इन्फॉर्मेशन सिस्टम, कि अगर हम रियल में जमीन पे यहाँ पे खड़े हैं तो वो हमारा लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड पॉइंट बताता है, लाइक ग्रिड सिस्टम के लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ये है और हम यहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। तो फर्स्ट और फॉरमोस्ट थिंग होगी कि हमारी जो लैंड है वो कंप्यूटर में किस तरह नजर आएगी, हम आइडेंटिफाई क्या कैसे करेंगे या वैलिडेशन कैसे करेंगे कि हमारी लैंड कंप्यूटर में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है
2: जी,
3: या यूजिंग इंटरनेट हम उसको डेटा कन्वे कर रहे हैं। तो जीपीएस इज द फोरमोस्ट टेक्नोलॉजी जो कि आती है प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर। इसके बाद हमारे पास एरियल रोबोट्स हैं, एरियल रोबोट्स का यूज है लाइक ड्रोन्स आप कह लें, ठीक है, उसकी हम एग्जांपल ले सकते हैं कि लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर जो फार्मर्स थे वो पेस्टिसाइड्स स्प्रे करते थे या इस तरह फर्टिलाइजर स्प्रे करते थे, तो अब हम ड्रोन्स वगैरह को यूज करके जो है वो स्प्रेइंग कर सकते हैं एनी टाइम। इसके अलावा हमारे पास एक सेपरेट फील्ड है या फील्ड ऑफ स्टडी है जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर के अंदर आती है, या इसको हम टेक्नोलॉजी भी कह सकते हैं, रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग जब हम एरियल रोबोटिक्स यूज करते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल अगर एक एकड़ की जमीन है उसके ऊपर हमने एरियल रोबोट को चलाना है, या हमें किसी भी पर्पज के लिए हमने उसकी क्रॉप ग्रोथ को मॉनिटर करना है, हमने पेस्टिसाइड्स को मॉनिटर करना है, या हमने पेस्ट अटैक को मॉनिटर करना है, तो हम एरियल रोबोट्स को यूज कर सकते हैं या ड्रोन को, बट इट इज फॉर लिमिटेड। तो जैसे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट्स इंक्रीज होती हैं या जिस जिस तरह की हमें हर्डल्स आती हैं उसके सोल्यूशन के लिए फिर आता है हमारे पास रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग की टेक्नोलॉजी क्या है, लाइक वी आर ऑब्जर्विंग द अर्थ फ्रॉम 1000 किलोमीटर अबव। सैटेलाइट की हम एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, तो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग के अंदर आ रहे हैं और ड्रोन्स भी एक्चुअली में रिमोट सेंसिंग के अंदर आ रहे हैं। लाइक एरियल रोबोटिक्स वुड बी 30 मीटर अबव फ्रॉम द अर्थ लैंड, और जैसे अगर हमने लार्ज एरिया की कवरेज करनी है तो फिर ड्रोन्स को हम उसकी लिमिटेशंस है, उसकी पावर की लिमिटेशन है, उसके एंगल की लिमिटेशन है, एक टाइम पे वो स्पेसिफिक एंगल को कवर करेगा, बट एट द सेम टाइम अगर हमने लार्ज एरिया को लाइक रीजन लेवल या फिर आप कह लें कि फार्म लेवल ऑब्जर्वेशन करनी है, तो रिमोट सेंसिंग वहाँ पे लाइक सैटेलाइट्स वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि हम सैटेलाइट्स के थ्रू जो है वो इमेजरी कलेक्ट कर लेते हैं और बाद में जो हमारे पास जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है उसके थ्रू हम उसकी प्रोसेसिंग और फिर एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजीज हैं। इसके अलावा जो सेंसर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि फार्मर सॉइल कलेक्ट करते थे और वो अपने लाइक नियरेस्ट सेंटर्स में जाते थे, जो भी एग्रीकल्चर सेंटर्स हैं वहाँ पे अपने सॉइल की टेस्टिंग करवाते थे, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, सॉइल ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि लाइक हमने सोइंग के टाइम पे सॉइल की हेल्थ को देखना है या उसके अंदर उसकी पीएच वैल्यू या न्यूट्रिएंट कितने हैं वो नेसेसरी हैं हमारे टाइप ऑफ क्रॉप के लिए या नहीं। तो अब क्या है कि भाई हम सेंसर्स के थ्रू सॉइल मॉइस्चर और जो भी सॉइल के पैरामीटर्स हैं या उसकी हेल्थ को है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ये वाली टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे। इसके अलावा हमारे पास एक और एग्जांपल भी आ रही है जो कि सॉफ्टवेयर साइड पे लाए कर सकती है, ये तो हमने हार्डवेयर बेस्ड देखी। सॉफ्टवेयर साइड पे हमारे पास जैसे IoT आजकल बहुत यूज हो रहा है
2: जी।
3: तो IoT एवरी टेक्नोलॉजी इज इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, वो किसी ना किसी एप्लीकेशन सिनेरियो में यूज ऑब्वियसली हो रही है। तो IoT एग्रीकल्चर में कैसे यूज हो रहा है कि हमारे पास जितने भी सेंसर्स हैं उनको हमने कनेक्ट कर दिया है ओवर द इंटरनेट यूजिंग मोबाइल फोन्स, ठीक है, और कोई ना कोई हमारे पास स्पेसिफिक एप्लीकेशन हो रही होगी कि जो हमने सेंसर्स लगाए हैं वो डेटा जो रिकॉर्ड हो रहा है वो कहीं ना कहीं पे स्टोर भी हो रहा है। ऑब्वियसली हमारा फोकस है कि हम डेटा को लें اور اس کا رائٹ یوز کریں جو کہ فارمرز کو نیکسٹ ٹائم ہیلپ کریں یا کرنٹلی جو ان کی کروپ گروتھ ہو رہی ہے. اس کی ایگزامپل ہم لے سکتے ہیں کہ جیسے ہم ایک سینسر لگا دیں گے, جیسے اینیمل آ جاتے ہیں لائک لینڈ کے اندر
4: جی,
3: تو ان سے بچانے کے لیے ہم سینسر ان کر دیں گے, کیمرا سینسر لائک دیٹ کین ریکارڈ کہ کس کس طرح کے وہ اینیملز اٹیک ہو سکتے ہیں یہ اس طرح کی, یا سوائل فرٹیلیٹی کو چیک کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ موبائل فون سے پکچرز لے کر اوور دا انٹرنیٹ جو ہے وہ شیئر کریں گے موبائل فونس کے اوپر. اس طرح کی موبائل اپلیکیشنز اور جہاں پہ موبائل کا انوالو ہے, یعنی کہ فارمنگ کو ایز اے اسمارٹ وے میں, تو جہاں پہ آئی او ٹی آئے گا وہاں پہ ہم اسمال اسکیل کی بات کر سکتے ہیں
4: جی. لسنرز, وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی میوزیکل بریک کا, ہمارے ساتھ رہیں, سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا.

0: चाहिए। तो ये सारा होगा अगर डेटा हमारे पास एक सेंट्रलाइज फॉर्म में होगा, या अगर हमने उसका एक कंप्यूटेशनल मॉडल बना लिया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग, तो वो उसमें बहुत हेल्प करेगा।
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का। हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। हमारे साथ मौजूद है मिस राबिया महमूद, इनसे मजीद सवालात करते हैं। जी मिस, आप बताइएगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में किस तरह अपना रोल अदा कर रही है?
2: जी मिस, जैसे हमने काफ़ी फैक्टर्स देखे हैं। पहले हमने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्रॉप साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स की क्वालिटी को असेस कर सकते हैं हम, सॉइल की हेल्थ को या सॉइल न्यूट्रिएंट्स को हमने उसका यूजेज देखा कि लाइक कैसे हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या एप्लीकेशंस का यूज करते हुए उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर हमने यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स देखा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम राइट टाइम पे एंड अकॉर्डिंग टू द राइट रिसोर्सेज अगर हम फार्मर्स को प्रोवाइड करें या उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, रिसोर्सेज का एक्सेस हो, तो हम ये सारे फैक्टर्स इम्प्लीमेंट करते हुए अपने इन्वायरमेंट को भी सस्टेन कर सकते हैं। लाइक फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज भी हमारी प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं, अल्टीमेटली फार्मर इफेक्ट होगा, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ्स जो हैं या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर ओवरऑल GDP को अफेक्ट करता है, इस तरह इफेक्ट नहीं होगा और वो इन्वायरमेंट सस्टेन रहेगा। और दूसरी बात, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर है और हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हर कंट्री जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है। लाइक अगर हम चाइना के एग्जाम्पल लें तो वो फुली 100% जो है वो ऑटोमेटेड है। लाइक हम तो हर स्टेप की बात कर रहे हैं, उनके हर स्टेप में जो मशीनरी भी यूज हो रही है वो सारी ऑटोमेटेड है। लाइक हार्वेस्टिंग ऑटोमेटेड है, मशीन्स कर रही है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है। लेकिन हमारे लेवल पे हम लाइक इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया फर्टिलाइजर्स के लिए एप्लीकेशन है, सॉइल मॉनिटरिंग या हेल्थ के लिए एप्लीकेशन है, या रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लार्ज एरिया पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को हम इस तरह सस्टेन कर सकते हैं। लाइक इन सारे पॉइंट्स और फैक्टर्स को देखते हुए इसके लिए हमारे पास लार्ज लेवल से हायरार्किकल लाइक लोअर लेवल फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन, फिर अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनके पास टेक्नोलॉजी का यूज। लाइक 5 years बैक पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने फार्मर्स को मोबाइल फोन्स दिए थे जिसमें कि दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशंस लाइक उनकी क्रॉप्स के हेल्थ सीजन, पेस्टिसाइड्स का यूज, किस तरह के पेस्ट अटैक कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो कुछ फार्मर्स जो थे वो उन्होंने उसको स्पेसिफिकली अपने क्रॉप के लिए ही उसको यूज किया, कुछ फार्मर्स ने जो

0: वो मोबाइल फोन लेकर एप्लीकेशंस डिलीट करके लाइक उसको पर्सनल यूजेस के लिए रखा. तो अगर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप उसका राइट यूज करें. सेकेंडली जब आपके पास टेक्नोलॉजी है आप उसका यूज कर रहे हैं तो उससे जनरेट होने वाला फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको चाहिए कि जो डेटा जनरेट हो रहा है या आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सेव किया जाए. फॉर एग्जाम्पल जैसे जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से या एसोसिएशन से. तो जितनी भी रिसर्च साइड पे इसके ऊपर हो रहा है इम्प्लीमेंटेशन अगर कम है तो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मर्स और वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, या गवर्नमेंट के पास डेटा है भी तो उस वो एक सेंट्रलाइज्ड नहीं है. लाइक अगर मैं बात करूँ क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज की तो हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है कि इतना अप्रोक्सीमेटली जनरेट हुआ प्रोडक्शन लाइक. और अगर मैं इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जैसे ह्यूमिडिटी है टेम्परेचर है इसका डेटा हमें रिक्वायर होगा. जैसे हमने आगे डीप लर्निंग मॉडल्स की बात की कि हमें उसमें डेटा चाहिए तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो अगर हमें रिसर्च साइड के लिए अगर हमें डेटा चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाहिए जैसे कि दूसरे कंट्रीज इंडिया है चाइना है देयर ऑल वेबसाइट्स आर ओपन. कोई भी लाइक ले मैन भी वहां से जाके अपना डेटा डाउनलोड कर सकता है. एज कम्पेयर टू अवर अथॉरिटीज वेबसाइट्स डू एग्जिस्ट देयर लेकिन उनके ऊपर जो डेटा है उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है या
1: अपडेटेड भी नहीं होगा
0: अपडेटेड और उसका राइट यूज या एक्सेस टू द यूजर्स. जैसे फार्मर्स को अगर एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करने की या अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करें तो कहीं हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करें उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को. तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं अगर हम इसका राइटली यूज करें या राइट एक्सेस टू द रिसोर्सेज हो तो हम अपने एनवायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं क्रॉप ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है. और इसी तरह अगर डेटा डॉक्यूमेंटेड होगा उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं तो पॉलिसी मेकर्स कैन मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस और प्रीएम्प्टिव मेजर्स कर सकते हैं किसी भी नुकसान से बचने के लिए.
1: बिल्कुल सही. अच्छा अगर हम बात करते हैं कि फार्मर्स को प्रिसीजन एग्रीकल्चर्स की तरफ जाना चाहिए तो इसको अडॉप्ट करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उन्हें.
0: फर्स्ट और फॉरमोस्ट चैलेंज यही हो सकता है कि लाइक अगर एक फार्मर है उसने अपनी क्रॉप को ग्रो करना है ठीक है तो वो मोस्ट नेसेसरी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा. लाइक उसको ट्रैक्टर चाहिए होगा ठीक है बाकी जो है मैन मेड हेल्प के थ्रू लाइक अगर सोइंग हो रही है तो ट्रेडिशनल वे में हो रही है कोई मशीनरी नहीं है लाइक लेबर पर्सन ही जो है सीड्स को सो कर रहे हैं. तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले लाइक अगर मशीनरी है तो जैसे अभी भी होता है मोस्टली जिनका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम अपना नहीं है लाइक दे बोरो फ्रॉम सम अदर अथॉरिटी वो उनको इतने टाइम पीरियड के लिए वाटर की एक्सेस देते हैं कि आप अपनी लैंड के लिए कर लें. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम मशीनरी ले रहे हैं फॉर सम टाइम पीरियड जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव हैं हेल्थ के हवाले से या बाकी भी एजुकेशन के हवाले से लाइक उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अभी भी जैसे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है यूथ को कि वो अपना कोई बिजनेस इनिशिएटिव करें या लाइक उनको रिटर्न करना इतने टाइम पीरियड में तो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं. फिर उनको एजुकेट करना चाहिए कि अगर हम उनको मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो उसका राइट यूज करें या टाइमली जो है वो रिटर्न करें. तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो फार्मर्स की एक्सेस नहीं है और अगर तो रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकती बट वो फार्म्स वो लैंड्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हैं वहां पे हम इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो जरूर कर सकते हैं.
1: जी मिस हमने अभी बहुत तफसील से प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हर पहलू पे गौर किया. मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आने वाले वक्त में प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है.
0: जी मैम इसमें तो है अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि हमारे पास कितनी ऑर्गेनाइजेशन है या कितने इंस्टीट्यूट्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है या मोस्टली स्पेसिफिक जैसे वीट ग्रोथ के लिए फैसलाबाद को एक माना जाता है कि लाइक वीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पंजाब में उस एरिया से और एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसमें जो सेंटर है वो यूएस एड फंडिंग से बनाया गया है लाइक. तो वहां पे जो रिसर्च हो रही है दैट इज एसोसिएटेड विद डेटा ड्रिवन थिंग्स के वो सब कुछ ڈاکیومینٹ کر رہے ہیں اور وہ ٹیکنالوجی کا رائٹ یوز بھی کر رہے ہیں اور ریزلٹس بھی ڈاکیومینٹ کر رہے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پریسیژن ایگریکلچر ہیلپ کس طرح کرے گی اور کس نے لیول پہ کرے گی یا کس اسکوپ پہ کرے گی. تو سب سے پہلے ہمارے پاس اویلیبلٹی آف ریسورسز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پھر اگر ہمارے پاس ریسورسز ہیں تو وہ ہم نے ریسورسز پرووائڈ بھی کیے ہیں ٹو دا رائٹ ایکسیس, ٹھیک ہے, فارمرس کو ہم نے پرووائڈ کیے ہیں. پھر ہم بگ لیول پر جا سکتے ہیں, بٹ ان سچویشن کے اگر گورنمنٹ ہمیں جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے اتنی فیسیلٹیز یا جتنے بھی ریسرچ انسٹیٹیوٹس ہیں اس کے لیے وہ اسپیسیفک ایگریکلچر کے لیے فنڈ نکلتا ہے یا جس طرح کے بھی پروجیکٹس ہیں یا انٹرنیشنلی فنڈیڈ پروجیکٹس ہیں ان کو ریئل ٹائم امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے آ جائے. اور ڈیٹا سینٹرک اپروچز ہونی چاہیے کہ جو جتنا بھی ڈیٹا ہمارے پاس جنریٹ ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس گورنمنٹ آفیشیل ویب سائٹس کے اوپر اویلیبل ہے. اور اس کے بعد ریسرچ پروجیکٹس انیشیٹیوز ہونی چاہیے فرام دا گورنمنٹ سائڈ. اور ایک یہ چیز ہے کہ لائک ریسرچ انسٹیٹیوٹس اپنا پارٹ پلے کر رہے ہیں, لائک دے آر ڈوئنگ دا ریسرچ انڈیویجولی, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو بڑی حد تک لائک ریسرچ پیپرز میں پبلش کر دیں گے. تو کولیبوریشنز ہونی چاہیے, گورنمنٹ جو ہے گورنمنٹ کا لنک ہونا چاہیے لائک دیز ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے ساتھ, لائک وہ ریسرچ اسٹوڈنٹس کو ڈیٹا پرووائڈ کریں, کیونکہ اگر ان کے پاس ریئل ٹائم ڈیٹا نہیں ہوگا تو وہ سیمولیٹڈ ڈیٹا پہ اتنی اوتھینٹیسٹی نہیں ہو سکتی کہ میں سیمولیشن کر رہی ہوں اسپیسیفکلی فار کراپ کے حوالے سے یا ایگریکلچر فیلڈ کے حوالے سے, اس لیے کہ ہمیں اس میں ریئل ٹائم ڈیٹا چاہیے, ہم سیمولیشن نہیں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس لیے پھر ریسرچ پروجیکٹس کے انیشیٹیوز ہونے چاہیے یا کولیبوریشنز ہونی چاہیے بٹوین دا انسٹیٹیوٹس, ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس, ریسرچ انسٹیٹیوٹس اینڈ گورنمنٹ.
1: پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کا بھی موقع دینا چاہیے.
0: جی
1: لسنرز, آج کے پروگرام کے اختتامی لمحات آ چکے ہیں. امید کرتے ہیں کہ پریسیژن ایگریکلچر کے حوالے سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ہم اپنی آنریبل گیسٹ مس رابعہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا.
0: تھینک یو مس فار یور انویٹیشن ایز ویل, مجھے بہت اچھا لگا اس ٹاک پہ آ کر. تھینک یو سو مچ.
1: لسنرز, آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ہفتے اسی ٹائم اسی پروگرام میں. سنتے رہیں FM 92.6 UCP کی دنیا. اللہ حافظ.
2: سلام سب کو جو ملک کی پہچان بنے, سلام سب کو جو مٹی کی مان بنے, جیسے سبز پرچم میں چاند اور ستارہ ہو, سلام سب کو

अल्जाइमर एक तेजी से बढ़ने वाला मर्ज है जो दिमाग के खुलियों, आसाब और दीगर अहम अफाल को नुकसान पहुंचाता है। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में अल्जाइमर के मरीजों की तादाद 10 लाख है। अमूमन बड़ी उम्र के अफराद इस बीमारी में जल्द मुब्तला हो सकते हैं। अल्जाइमर जदीद तिब के लिए एक अहम चैलेंज है क्योंकि अभी तक इस बीमारी का इलाज दरियाफ्त नहीं हो सका। इससे सिर्फ एहतियात मुमकिन है। अपने प्यारों का ख्याल रखें और अल्जाइमर से मुतालिक मजीद मालूमात हासिल करने के लिए अल्जाइमर केयर सोसाइटी को info@alz.org.pk पर ईमेल करें या हमारे फोन नंबर 04233111877 पर राब्ता कीजिए। Are you tired of

0: FM 92.6.
1: मुझे डायबिटीज, मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
2: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
3: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
1: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
4: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

किसी भी ऐसी कॉल या एसएमएस का जवाब ना दें जिसमें आपसे जाती या माली मालूमात मांगी जा रही हो, रकम भिजवाने का कहा जाए या इनाम का लालच दिया जा रहा हो। ये एक धोखा है। सर्विस प्रोवाइडर को मुश्तबा नंबर बंद करने के लिए रिपोर्ट करें। पीटीए को शिकायत दर्ज करवाने के लिए पीटीए की वेबसाइट www.pta.gov.pk पर मौजूद कंप्लेंट फॉर्म के जरिए या पीटीए सीएमएस मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें। व्हाट्सएप पर ऐसे धोखाधड़ी पर मबनी पैगामात मौसूल होने की सूरत में

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की,
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: अस्सलाम वालेकुम सामीन, प्रोग्राम मंजिल के साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर अली अशरफ और आप सुन रहे हैं FM 92.6। और मंजिल में आपकी हम मुलाकात करवाते हैं कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल शख्सियात से जिनकी लाइफ स्टोरी को सुन के आप अपने आप को एक रीथॉट कर सकते हैं, रीथिंक कर सकते हैं अपनी लाइफ को, अपनी स्ट्रगल को, अपने गोल्स को और अपनी अचीवमेंट के रास्ते में जो आपको हर्डल्स आ रही हैं उनको भी आप रिविजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि जिन जिन लोगों ने भी अपनी मंजिल हासिल की है वो किसी ना किसी प्रोसेस से गुजरे हैं। तो मंजिल में गेस्ट तो हमारे साथ होते ही हैं, लेकिन आज का मंजिल हम थोड़ा सा तो डिफरेंट करने लगे हैं। आज की जो मंजिल है उसमें हम बजाय रैंडम सॉन्ग प्ले करने के आज हम सजाद अली को जो है चलाएंगे। और जो जो सजाद अली के फैंस हैं, लिसनर्स हैं, और मुझे यकीन है कि मेरी तरह आप भी सजाद अली को बहुत ज़्यादा पसंद करते होंगे, तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सजाद अली के सॉन्ग आज हम प्ले करने लगे हैं। तो आज विजडम की बात भी होगी, हल्की फुल्की गुफ्तगू भी होगी और साथ साथ पूरे प्रोग्राम में सजाद अली को भी सुना जाएगा। तो हम आज के जो गेस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा। डॉक्टर मोहम्मद अली रज़ा जो हैं वो ENT हैं और ऑब्वियसली MBBS डॉक्टर हैं, डॉक्टरी का प्रोफेशन है। इनसे जानेंगे इनकी लाइफ के बारे में और पूछेंगे इनसे कि ये अपने प्रोफेशन के अलावा क्या क्या करते हैं, और ये भी पूछेंगे कि नाक कान और गले के हवाले से हमें क्या क्या मोटी मोटी बातों पर एहतियातें बरतनी हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, वेलकम टू आवर शो। कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी आके, आज हमारे रेडियो आके?
1: जी अस्सलाम वालेकुम, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अशरफ साहब, आपने मधु किया और बहुत अच्छा लग रहा है जी। यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस हमेशा से ही जो है एक बड़ी प्यारी जगह रहीं। मैंने जब अपना MBBS किया तो मैं स्टिल मिस करता हूँ उस टाइम को जब मैं कॉलेज जाया करता था, और मेरा दिल करता है काश के मैं जंप कर जाऊँ दोबारा, वही 5 साल गुजारूँ जाके, जो कि मुमकिन नहीं है। और जब मैं किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज अभी भी जाता हूँ तो एक एहसास होता है उनको देख के, यंग ब्लड को, उसके अलावा देख के स्टूडेंट्स को, कि ये वो टाइम है जो हम अब वापस नहीं ला सकते। जो वक्त है ये एक रिलेटिव चीज़ है और ये किसी इंसान के हाथ में, इसकी कुदरत नहीं है मासवाय रब के।
0: तो हर डॉक्टर साहब, हर एज का एक अपना मज़ा है, जिसे चेरिश किया जाए तो मज़ा दुबाला हो जाता है। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का जो पहला सेगमेंट है इसमें हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। बताएं अपनी फैमिली के बारे में, आपकी पैदाइश कहाँ पे, किन इलाके में आपका बचपन गुजरा और कहाँ से आपका ब्रॉडअप हुआ?
1: जी, मैं डिस्ट्रिक्ट कुकाड़ा में, एक तहसील है रिनाला खुर्द।
0: जी जी,
1: मैं वहाँ पैदा हुआ। मेरे वालिद साहब डॉक्टर मोहम्मद अमीन है, वहाँ पे वो भी MBBS डॉक्टर है, जनरल प्रैक्टिशनर, ऑर्थोपेडिक सर्जन है। तो मैं वहाँ पैदा हुआ, मेरी अर्ली एजुकेशन भी वहीं की है
0: जी,
1: तो वहाँ पे ब्रॉटअप हुआ। एंड देन फिर जो है FC कॉलेज में आ गया मैं, और फिर उसके बाद अपनी जो है ग्रेजुएशन के लिए FMH कॉलेज ऑफ मेडिसिन डेंटिस्ट्री, उसके 4th बैच में मैं इंडक्ट हुआ। देन मैंने कंप्लीट किया उसे, और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए CPSP के साथ अटैच हो गया और शेख जायद से अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की। देन अनदर पोस्ट ग्रेजुएशन में मैंने अपने आप को एनरोल किया, लेकिन उसे मैंने कंप्लीट नहीं किया। फिर मैं गवर्नमेंट सर्विस चला गया, उसके बाद जो है मास्टर इन हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किया। एंड काफ़ी लंबा जो है इस तरह सफ़र है, लेकिन आपने जो कि बात की कि बचपन कैसा गुजरा, तो बचपन रिनाला खुर्द दुकाड़ा में गुजरा, बड़ा मज़े का गुजरा। और वक्त चेंज हो गया, बहुत चेंज हो गया, और एक अच्छा वक्त था, यही कह सकता हूँ।
0: अच्छा डॉक्टर साहब, मैं भी उकाड़ा में रनाला खुर्द गया हुआ हूँ, दीपालपुर वाली साइड पे, और वहाँ पे एक बड़ी प्यारी सी वहाँ नहर गुजरती है, एक आबो महल से शायद दीपालपुर वाली साइड पे है, या वो मैं, क्योंकि मैं कोई 5-6 साल पहले वहाँ पे गया था, तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त मेमोरीज हैं वहाँ की। तो एक नहर है और उसके साथ छोटा सा बाजार सा है, वो मेरे ख्याल से शायद तहसील दीपालपुर में है और ये साथ साथ हैं। तो डॉक्टर साहब, बचपन का कोई मज़ेदार वाक़या, कैसे आप शरारती बच्चे होते थे, पढ़ाकू होते थे, क्या होते थे? क्योंकि डॉक्टर्स के बारे में ये ख्याल किया जाता है कि यार ये तो बड़े स्टूडियस किस्म के ना, और हर वक्त पढ़ते ही रहते होंगे, फर्स्ट आते होंगे, ग्लासेस लगे होंगे, और बिल्कुल जो है सीरियस किस्म के बच्चे होंगे। तो क्या ऐसा ही था आपका बचपन?
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, एक एवरेज सा बचपन था। बचपन में ख्वाहिश भी नहीं थी डॉक्टर बनने की, ना ही ये प्रेशर था फैमिली की तरफ से। फ्रेंडली तो बचपन जो है, अगर मैं उसको सम अप करूं तो पहले 5 साल मेरे किसी प्राइवेट स्कूल में थे और बड़े मजे के थे। देन फिर मैं जो है एक गवर्नमेंट स्कूल में मुझे इंडक्ट करवाया गया। मेरे वाले साहब ये पर्टिकुलरली चाहते थे कि मैं देखूं लाइफ की रियलिटीज को। तो मुझे वहाँ पे जो लोकल गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, वहाँ पे मैंने मुझे दाखिल करवाया गया। बड़ा डिफरेंट एनवायरनमेंट था वहाँ पे, बड़ा टफ एनवायरनमेंट था। मैं ज़्यादातर परेशान नहीं रहता था उन 4-5 सालों में, क्योंकि मैं जिस ब्रॉटअप से था वहाँ पे डिफरेंट तरह के बच्चे थे, और 3-4 साल मार खाते रहे वहाँ पे हम, ठीक है ना। तो फिर 3 साल बाद हमें भी मारना आ गया, तो चीजें चेंज होगी। जो मेरे वाले साहब मुझसे चाहते थे वो शायद
0: आपको स्ट्रीट स्मार्ट बनाना
1: चाहते थे, और बड़ा अच्छा उनकी मेहरबानी है। और हमेशा से अब भी मैं देखता हूँ कि कभी कभार उनसे मुझे उनसे इख्तलाफ होता है, लेकिन उससे 6-8 माह बाद मैं इस चीज पे मजबूर हो जाता हूँ कि वो जो चीज कह रहे होते हैं वो जाहिर है वो ज्यादा बेहतर होती है, और उन्होंने जाहिर जमाने को मेरे से 30-35 साल पीछे से देखा हुआ, ही नोज बेटर,
0: और ज्यादा देखा हुआ है,
1: ज्यादा देखा हुआ है, तो वो समझते हैं और वो मुझे जानते हैं। ठीक है ना, आपको अपने माँ बाप से ज्यादा कौन जान सकता है। तो उन्होंने वो चीज खैर मेरे में इंडक्ट की, जो कि अभी आज तक शुक्र है अल्लाह का जिसने मुझे फायदा दिया है, हर चीज वहां से हमने फिर सीखी आगे चले। और जो बाकी पढ़ाकू किस्म के नहीं थे जी, हमसे ज्यादा अच्छे स्टूडेंट थे, कभी उनके साथ मेरा वो भी नहीं था कि जिसे क्या कहते हैं कंपटीशन भी नहीं था, लेकिन 8 तक, बल्कि मैं 6 से 8 तक बड़ा बिलो एवरेज स्टूडेंट रहा। पहले 5 साल में अच्छा स्टूडेंट रहा, एनवायरनमेंट अच्छा था, उसके बाद एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से बच्चा नहीं उस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। लेकिन फिर एट द एंड 8 के पास कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए मेरी क्लास में, मैंने देखे कि मुझे ये लगा कि नहीं यार इनके साथ कम्पीट करना चाहिए, ये समझते हैं कि शायद यही सब कुछ है। तो फिर मैंने 1-2 साल अपने फिर जान मारी और मैंने अपनी पोजीशन बहुत बेहतर कर ली अल्लाह के फजल से।
0: जी सामीन, डॉक्टर अली रजा से हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और जिस तरह की हमने आपको बताया कि आज हम सजाद अली को प्ले करने जा रहे हैं, तो पहला जो सॉन्ग है सजाद अली का वो आपकी नज़र करने जा रहे हैं, परदेस। और ये सजाद अली का बहुत ही बेहतरीन सॉन्ग है। आप में से जो भी जिन के भी अपने बाहर हैं या जो बाहर हमें हमारी एंड्रॉयड और iOS के ऐप के ज़रिए सुन रहे हैं पूरी दुनिया में, उनके लिए ये सॉन्ग है। और ख़ास तौर पर मेरे दो बहुत अच्छे दोस्त शबीर अदील और ज़ुबैर साजिद ढिल्लू, जो कि कनाडा और दुबई में इस वक्त मौजूद हैं और अक्सर ये प्रोग्राम सुनते भी हैं, मुझे फीडबैक भी देते हैं, उनके नाम ये सॉन्ग है। और यकीनन आपको ये एक बहुत इमोशनल फील देगा। तो सजाद अली वैसे भी सुनते हुए थोड़ा सा बंदा इमोशनल हो जाता है, तो ये ब्यूटीफुल सा सॉन्ग सुने, उसके बाद हम वापस आएंगे और डॉक्टर अली रजा से गुफ्तगू जारी रखेंगे।

0: जी सामिन, प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अली अशरफ। और यकीनन आपने सॉन्ग बहुत इन्जॉय किया होगा और आप नॉस्टैल्जिक भी हो गए होंगे और थोड़े से टची भी हो गए होंगे। लेकिन जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, ये हमारा सरमाया और ख़ास तौर पे जिन मुल्की हालात से हम गुजर रहे हैं, इसमें उनके भेजे हुए जो रेमिटेंसेज हैं वो हमारे लिए एक लाइफ लाइन का हैसियत रखते हैं, तो उनकी कुर्बानियों को हम एक्नॉलेज करते हैं। और जो जो भी ओवरसीज़ में हमें सुन रहा है और जिनके रिश्तेदार यहाँ पे जो उनका इंतज़ार कर रहे हैं या उनकी राह तक रहे हैं, उन दोनों को हमारा खराज अकीदत और खराज तहसीन है। और अल्लाह ताला पाकिस्तान पर बहुत अच्छे वक्त लाए, पाकिस्तान को दिन दुगनी और रात दुगनी चौगनी तरक्की की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। तो हम डिस्कस कर रहे थे डॉक्टर अली रज़ा से, इनसे ब्रेक पे जाने से पहले हमने इनकी अर्ली लाइफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। डॉक्टर साहब, MBBS जब हम सुनते हैं नाम, तो दो चीज़ें हमारे जहन में आती हैं, एक तो वो कि बहुत पढ़ना पड़ता है, और दूसरी जो हमें बॉलीवुड की मूवीज़ ने दिखाया कि जी ऐसे होता है वैसे होता है, तो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि आप दोनों एक्सट्रीम्स को ज़रा डिस्कस करें, कि पढ़ाई के आस्पेक्ट को पहले डिस्कस करें कि कैसा MBBS में आपका पढ़ने का तजर्बा था और कितनी सख्त पढ़ाई होती है।
1: नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है जी, MBBS की पढ़ाई जो है वन ऑफ द टफेस्ट स्टडीज़ है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अगर आप पूरी दुनिया में देखें तो जो प्रेशर इसमें है उसको मेरा ज़ाती वैसे ख्याल है कि इंजीनियरिंग में भी इतना ही प्रेशर होगा या शायद इससे ज़्यादा ही हो, क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं हमारे पास जिसने इंजीनियरिंग और MBBS दोनों किया हो, ठीक है ना। अब मैं कंपेयर कर सकता हूँ, मैंने MBBS किया, MCPS किया, वो भी MBBS किया कि पोस्ट ग्रेजुएशन है, एंड देन फिर मैंने जब मास्टर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन किया, तो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि एक सोशल डिग्री थी तो मुझे आसान लगी, मुश्किल नहीं लगी, ठीक है ना। लेकिन
0: आप इतनी मुश्किल से गुजरे कि आपको आने वाली जो कम मुश्किल थी वो आसान हो,
1: ऐसा भी कह सकते हैं, बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। असल में इसमें फॉर्मेट टफ है, अगर हम इसको देखें तो नॉकडाउन टाइप है, पहले दो साल के आपके पास लिमिटेड चांसेस हैं, और FSC के आप बैकग्राउंड से आते हैं, तो फ्रेंकली मुझे, मैं अपनी बात करता हूं, तो मुझे मतलब अगर तीन मेन सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, तो इवन के मेरे वाले साहब डॉक्टर हैं, तो मुझे काफी अंदाजा था, लेकिन मुझे हिस्टोलॉजी का जाके 3 माह बाद पता लगा कि ये भी हमारा एक सब्जेक्ट है, इसमें से एग्जाम आना है, और मैं उसको उस तरीके से ले नहीं रहा था। तो सब्जेक्ट्स वास्ट हैं, ठीक है ना, फिर उनका जो है असेसमेंट क्राइटेरिया वो टफ है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं है जी, वो एनवायरनमेंट ऐसा होता है कि आप फिर उसमें कर ही लेते हैं, और मुश्किल तो कुछ भी नहीं है, स्टडी ज्यादा जरूर है।
0: दूसरा जो एस्पेक्ट है जो हमें फिल्म्स में देखने को मिलता है कि वहां पे रिगिंग होती है, वहां पर एक पूरा एक जो एनवायरनमेंट है अदर देन स्टडी, उसको आपने और आपकी जिंदगी से कोई ऐसे वाकयात जो आपने वहां पर ड्यूरिंग योर MBBS आपने एंजॉय किया हो या विच यू कैन रिविजिट।
1: हाँ, रिगिंग तो मेरा ख्याल है कि हर इंस्टीट्यूट में आजकल होती है, आपका आप भी एक यहाँ पे ऐसा ही है ना, ठीक है ना, तो MBBS में बिल्कुल है, उसमें मैंने ये देखा है कि एलिमेंट ज्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है, मेडिकल कॉलेजेस में इसका एलिमेंट कुछ ज्यादा है, बाकी जो है लाइफ मजे की है वहाँ पे मेडिकल कॉलेजेस में, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है ना। और जो है यूजुअली मेडिकल कॉलेजेस अगर आप देखें बाकी फैकल्टीज के साथ कंपेयर करते हैं, तो ये यूजुअली अकेले होते हैं, जैसे आप इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाएं तो इंजीनियरिंग की फैकल्टी भी होगी, आपको हो सकता है एनवायरमेंटल साइंस की भी मिल जाए, आपको मैनेजमेंट
0: नॉन इंजीनियरिंग स्कूल्स भी आपको साथ
1: मिल जाएंगे, ठीक है ना, इसी तरह आपको सोशल साइंसेज की भी साथ मिल जाएंगे। लेकिन जहाँ पे MBBS हो रहा होगा वो ये इसकी मुझे कोई खुद समझ नहीं आ सकी, ये कोई अच्छा मेडिकल एजुकेशनिस्ट हो या के, तो वही आपको बताए, ये यूजुअली कॉर्डन ऑफ होते हैं, MBBS की फैकल्टी है साथ BDS की है या अकेली MBBS की है।
0: और इवन हमने ये भी नहीं देखा कि BDS या और जो एलाइड हेल्थ साइंसेज हैं वो भी मेरे साथ नहीं अक्सर देखा,
1: कई कॉलेजेस में बिल्कुल साथ हैं, जैसे जहां से मैं ग्रेजुएट वहां साथ है, लेकिन ये एक चीज ये पता नहीं होनी चाहिए, नहीं एक थोड़ा सा डिफरेंस का एलिमेंट भी, डिफरेंशिएशन आ जाती
0: है, डाइवर्सिटी
1: होती है, लेकिन जो पर्टिकुलर MBBS की अपनी फैकल्टी है, जब हम होते थे तो ये अपने आप को अलहदा रख लेती होती थी, मतलब जो स्टूडेंट्स है वो एक बाउंड्री, एक वजहर मिनी बाउंड्री तो नहीं होती थी, लेकिन उनके ब्रेन में एक डिफरेंस वो क्रिएट कर लेते थे, होना चाहिए या नहीं इस पे मैं डिस्कस नहीं करता हूं। तो
0: डॉक्टर साहब ऐसा तो नहीं कि MBBS अपने आप को ब्राह्मण समझते थे और बाकी सारों को
1: नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस टाइम पे जितना, अगर मेरे से कोई पूछता है तो मैं उन्हें कहता हूं कि आप अलाइड हेल्थ साइंसेज में आए, क्योंकि जो फ्यूचर है वो MBBS का नहीं है, फ्रेंकली ये मैं, अगर कोई लिसनर सुन भी रहे हैं तो उनको मैं बता देता हूं कि अगर आज के दौर में हम देखें तो इस टाइम पे डॉक्टर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो चुका है, उसकी खपत नहीं है मार्केट में, और या फिर वो बड़े एक सॉलिड प्लान के साथ आए, जो कि हमारे यहाँ फुकदान है जिसे हम कहते हैं कैरियर काउंसलिंग का, ठीक है ना, ये भी मैं करता हूँ, लोगों को इस चीज पे गाइड करता हूँ। तो अलाइड हेल्थ साइंसेज का ब्रेन था स्कोप है, अगर आप देखें तो इस टाइम पे मैंने ऐड देखी और मैं हैरान रह गया कि एक एमबीबीएस डॉक्टर के लिए एक प्राइवेट सेक्टर हॉस्पिटल ने पे जो है 45,000 की हुई थी और जो कि वो है एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के लिए 95,000 लिखी हुई थी। अच्छा। बड़ी दर्द की बात थी, पेनफुल थी, लेकिन इसमें ये जी मार्केट का रूल है डिमांड एंड सप्लाई का। तो इस टाइम पे जी आप देखें तो कम से कम मेरा ख्याल है लाहौर में 25-30 मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेरा ये जाती ख्याल है, अल्लाह मेरे से गलती ना करे, ये शायद ज्यादा ही है। और वो जो लाहौर का प्रोडक्ट है वो कहता है मैंने रहना भी लाहौर में, तो आप कहाँ पे उसको एडजस्ट करें।
0: हालांकि छोटे इलाकों में डॉक्टर्स की फिर भी डिमांड सप्लाई का थोड़ा सा गैप है, यानी सप्लाई कम है वहाँ पर और डिमांड ज्यादा है।
1: बिल्कुल ऐसे ही
0: देहातों में और इस तरह के इलाकों में, तो जो लोग बाहर से भी यानी पढ़ के आते हैं वो भी, यानी जो हमारे लाहौर के करीबी जो इलाके हैं देहाती, उनसे भी लोग कहते हैं कि यहाँ पर ही प्रैक्टिस करें, ऐसा ही है डॉक्टर्स।
1: बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन भीड़ चाल से निकलना पड़ेगा, इनोवेशन लानी पड़ेगी। जो तो बन गए हैं या जो के बनने के प्रोसेस में, उनको तो रोका नहीं जा सकता, उन्हें अपने थर्ड ईयर फोर्थ ईयर एमबीबीएस में बड़े एक सॉलिड प्लान के साथ होना चाहिए कि वो क्या करने जा रहे हैं, इधर के वो क्लिनिकल साइड पर आना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में आना चाहते हैं या कि किसी और पैरा फील्ड में जाना चाहते हैं, उन्हें बड़ा क्लियर होना चाहिए।
0: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी एक जबरदस्त बात की, करियर काउंसलिंग की, और खासतौर पर मेडिकल के शोबे में जो प्री मेडिकल के बच्चे हैं जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं या उनके पेरेंट्स हैं, उनको एमबीबीएस के अलावा और कोई बात पता नहीं होती और या एक आधी कोई और फील्ड पता होती है, तो आपने जो करियर काउंसलिंग की बात की, तो हम अभी लेने जा रहे हैं म्यूजिक ब्रेक, और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपने हमें जरूर ही हमारे साथ शेयर करें कि एमबीबीएस के अलावा क्या क्या बच्चे कर सकते हैं। लिसनर्स, आपको हम सुनाने जा रहे हैं सजाद अली का सॉन्ग रावी, और क्योंकि हम लाहौर में जो है वो रावी किनारे बैठे हैं, तो और ये सॉन्ग भी बड़ा जिस तरह परदेश सॉन्ग हमने भी प्ले किया था वो था ही परदेसियों के लिए, लेकिन ये भी इसको सुन के जो है एक फील बड़ी नॉस्टैल्जिक किस्म की आती है। तो आप रावी एंजॉय करें, और रावी से जब आप वापस आएंगे यानी ब्रेक से वापस आएंगे, तो हम प्री मेडिकल के बच्चों को एमबीबीएस के अलावा और कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं ये डिस्कस करने

0: ये सामीन प्रोग्राम है मंजिल और मैं हूँ आपका मेजबान डॉक्टर अली अशरफ और आप हमें सुन रहे हैं FM 92.6 पे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो हमारे जो सॉन्ग प्ले हो रहे हैं वो सज्जाद अली के हैं और आप यकीनन मेरी तरह बहुत इंजॉय कर रहे होंगे क्योंकि मैं सज्जाद अली के सॉन्ग सुनते साथ ही मुझ पर एक कैफियत तारी हो जाती है और मैं इसको बड़ा इंजॉय करता हूँ। और आगे भी हम प्ले करने जा रहे हैं सज्जाद अली के बड़े ही हिट सॉन्ग, तो हमारे साथ रहेगा। और हमारे साथ आज गुफ्तगू में शामिल हैं डॉक्टर अली रजा और इनसे बड़ी मजेदार बातें हो रही हैं। और जब ब्रेक पे जा रहे थे मैंने आपसे कहा था कि हम जो है डिस्कस करेंगे कि प्री मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं अमूमी तौर पर ये कहा जाता है कि अगर उनका MBBS में एडमिशन ना हुआ तो उनकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। और स्टैट्स के मुताबिक जितने भी FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं उनमें से सिर्फ 5% जो हैं वो MBBS में जाते हैं और 95% जो स्टूडेंट्स हैं उनको कोई ना कोई और राह लेनी होती है। तो डॉक्टर साहब हमें बताएं, आप माशाल्लाह एक प्रैक्टिशनर हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टरी को प्रैक्टिस करते हैं, तो पहले तो ये बताएं कि जो FSC प्री मेडिकल के स्टूडेंट्स हमें सुन रहे हैं और जो उनके पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं, क्या क्या उनके पास स्कोप है MBBS के अलावा?
1: अगर तो जी हम बात करते हैं कि MBBS के अलावा प्री मेड का बच्चा कहाँ जा सकता है, तो वो अलॉट ऑफ फील्ड्स हैं, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी है, अलाइड हेल्थ साइंसेज में बाकी मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का बैचलर्स है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी का बैचलर्स है, आर्डियोलॉजी का बैचलर्स है, साइकोलॉजी है, क्लिनिकल साइकोलॉजी है, स्पीच एंड लैंग्विस्टिक पैथोलॉजी है और ए नंबर ऑफ अदर जो हैं कि जो अभी पाकिस्तान में आने वाली हैं या आ चुकी हैं, ठीक है ना। इससे हटके वो अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल के अलावा किसी भी और चीज़ में बैचलर्स कर सकता है। अगर वो देखता है कि वो उसमें मेरिट नहीं बना पा रहा है तो वो मेरे ख्याल में कि सोशल साइंसेज की तरफ आ सकता है, अपने कैरियर को आगे परसू कर सकता है, सिविल सर्विसेज की तरफ कर सकता है और बहुत कुछ है। लेकिन इस सब के साथ कुछ भी वो करने जा रहा है उसको सबसे पहले इस एज में अपना जो है पैशन पता होना चाहिए, जो कि बड़ी मुश्किल से पता लगता है। ये पेरेंट्स का काम है, वो सिर्फ उसको एक अपनी मर्जी की लाइन ना दें, वो उसे कहें कि वो उसका भी पोटेंशियल देखें। अगर वो अच्छा क्रिकेट खेल रहा है या वो अच्छा फुटबॉलर है तो उसको उधर भी होने दें। अगर अच्छा आर्टिस्ट है तो उसके अंदर का आर्टिस्ट ना मार दें, उसको करने दो, जो उसका पैशन है उसको कभी ना स्नब करें। ये एक जो आप एजुकेशन लेने जा रहे हैं याद रखें, ये कभी भी उस तरीके से, क्योंकि जो पेरेंट्स वो सोचते हैं ये अच्छी एजुकेशन लेगा, अच्छी अर्निंग करेगा, अर्निंग एजुकेशन के साथ बिल्कुल नहीं लिंक, अर्निंग पैशन के साथ लिंक्ड है। वो जो काम आप अपने मजे से करते हैं वहां से आपको पैसा जनरेट होता है। अगर आपका प्रोफेशन और पैशन सेम हो जाए तो ये अल्लाह का आप पे खास करम होता है। इससे हटके अगर हम अगला जो एज देखें, जो आने वाला दौर है अगले 30 से 40 साल, ये एज ऑफ सोशल मीडिया या कि आप मीडिया कह लें, तो उसकी एक अपनी प्रोफाइल, एक पॉजिटिव प्रोफाइल जनरेट हो जानी चाहिए 16-17-18 साल की उम्र में उस बच्चे की। एक पॉजिटिव प्रोफाइल उसकी, जो भी उसका आर्ट वर्क है या कि जो उसका पैशन है वो उसको उस प्रोफाइल के ऊपर उसे आप अपलोड कह लें, या कि वो उसको एक अपनी अपीयरेंस जो है आप समझ लें इसमें मेटा वर्ल्ड में कह लें आप उसे, या उसे आप कह लें इंटरनेट की दुनिया में कह लें, या आप उसे कह लें कि सोशल मीडिया की लाइफ में, वो उसे जनरेट कर लेनी चाहिए। क्योंकि वो 18 साल की उम्र में एक जनरेट करेगा और एक 28 साल की उम्र में जनरेट करेगा, तो इसमें 10 साल का फर्क है, ठीक है ना। लेकिन एक और बड़ा अजीब ट्रेंड है, वो मैं आपको यहीं पे ऐड कर जाता हूं कि हर बंदा आजकल उसमें एक इन्फ्लुएंसर बना हुआ है, एक मॉडलिंग की तरफ आ गया हुआ है, पर्टिकुलरली फीमेल्स। ये चीज ठीक है, बुरी नहीं है, होनी चाहिए, लेकिन ये मेरा ख्याल है कि इट नीड्स टू बी डिस्करेज।
0: असल में ज्यादा लोगों ने, जिस तरह आपने शुरू में भी बात की थी कि भेड़ चाल का एक जो कल्चर है, वो ज्यादा कुछ लोगों ने देखा कि कुछ लोग इन्फ्लुएंसर बन गए हैं, उन वो उससे अर्निंग कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम सारे भी इस तरफ ही, यानी जो भेड़ चाल का आपने पहले जिक्र किया। डॉक्टर साहब आपने एक बड़ी प्यारी बात की है कि एप्टीट्यूड देखना चाहिए, ना कि ये देखना चाहिए कि स्कोप किसका है, स्कोप इन्वर्टेड कॉमा में हमारी नजर में।
1: Exactly.
0: तो डॉक्टर साहब एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करने का कोई तरीका है, किस तरह जो लिसनर अपना कोई एप्टीट्यूड आइडेंटिफाई करना चाहे तो वो कैसे कर सकता है?
1: माँ सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है जी, इस्लामी माशरे में भी और हमारे पाकिस्तानी माशरे में भी, और इससे हटके अगर वेस्ट की भी बात करें जी, तो जी। एक कॉल था वो मेरा ख्याल है कि हिटलर का था कि आप अच्छी माएं दें मैं आपको अच्छी कौन देता हूँ,
0: जी जी, नेपोलियन का शायद, नेपोलियन का
1: शायद। तो कहने का मतलब ये है कि जो मदर्स हैं वो बेस्ट इंस्ट्रूमेंट हैं अपने बच्चे का एप्टीट्यूड देखने के लिए, और दूसरे नंबर पे उसका वालिद है, ठीक है ना। मैं ये कहूंगा 80-90% माँ को पता होता है कि उसके बच्चे के क्या इंटरेस्ट हैं, और वो फ्रेंकली माँ और बच्चे के इंटरेस्ट 70% सेम होते हैं। जेनेटिक मेकअप ऐसा है ना,
0: अच्छा,
1: जो बच्चा है वो अपनी माँ से 70-75% इनहेरिटेंस ले रहा है, बाप से सिर्फ करेक्टरिस्टिक ले रहा है, ठीक है ना। उसमें तो माँ को भी पता होता है कि उसका बच्चा, वो जो एक पंजाबी में भी कहते हैं कि अपने बच्चे का पता ही होता है सबको, माँ को, तो उसकी जो है जो एप्टीट्यूड है उसका बेस्ट इंस्ट्रूमेंट माँ है। लेकिन माँ विदाउट एनी प्रेशर होनी चाहिए उसके डिसीजंस में, मतलब उसके ऊपर कोई और सोशल या फैमिली के उस तरीके से प्रेशर्स ना हो, वो एक फ्रीली देखे अपने बच्चे को कि उसका क्या इंटरेस्ट है, उसको नजर आ रहा होता है कि उसका माइंड आर्टिस्टिक है उसका माइंड जो है वो साइंटिफिक है, उसका माइंड जो है वो हल्ले गुल्ले वाला है, वो स्पोर्ट्समैन है, वो क्या है, वो सुकून पसंद है, वो क्या चाहता है। तो माँ पहला इंस्ट्रूमेंट है। फिर उसके साथ साथ गवर्नमेंट लेवल पे प्रोग्राम्स होने चाहिए और साइकोलॉजिस्ट इसमें बहुत अच्छा और बड़ा रोल प्ले करते हैं। लेकिन ये चीज मुझे तकलीफ के साथ कहनी पड़ रही है कि साइकोलॉजिस्ट ने भी अपने फील्ड को उस तरीके से ऑप्ट नहीं किया। अभी अगर मैं बात करूं तो ना चाहते हुए भी नाम आता है बड़े मोहतरम और बड़े ग्रेट मैन है कासिम अली शाह साहब, उन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा बहुत
0: काउंसलिंग के हवाले से काफी काम किया।
1: तो एटलीस्ट आप ऐसे किसी बंदे से जो कि समझदार है उससे आप ले सकते हैं गाइडलाइन, उससे डिस्कस कर सकते हैं कि जी ये, और ये वो लोग होते हैं जो दिल्ली के कई लोगों को देख रहे होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: ये आपके साथ डिस्कशन करके देख लेते हैं।
0: जिस तरह एक डॉक्टर हजारों पेशेंट्स को देखता है तो उसे तजर्बा हो जाता है, इस तरह जब ये करियर काउंसलिंग के जो एक्सपर्ट हैं ये हजारों लोगों की काउंसलिंग करते हैं तो उनको आइडिया हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी जब हम ब्रेक पर थे तो आपने एक बड़ी जबरदस्त एक बात

0: का पता होना चाहिए, मेरे ब्रेन ने वर्क करना शुरू कर दिया, सबकॉन्शियस ने काम करना शुरू कर दिया। यही चीज जो एमबीबीएस का स्टूडेंट थर्ड फोर्थ ईयर एमबीबीएस में ये कंफर्म होना चाहिए कि मैंने आगे क्लिनिकल होना है या कि मैंने डॉक्टरी छोड़ देनी। दो मेन सवाल पहले जनरेट होते हैं कि मैंने डॉक्टर बनना है या कि मैंने डॉक्टरी नहीं करनी हो। ये एक बड़ा चंक होता है एमबीबीएस करने वालों का कि वो फेड अप हो जाते हैं ड्यूरिंग स्टडीज, ये कह देते हैं यार ये काम नहीं करना, कर लेनी है डिग्री ले लेनी है लेकिन इसको आगे परसू नहीं करना है, ये बड़ा उनको क्लियर होता है। और कुछ होते हैं वो कहते हैं नहीं यही काम करना है। तो फिर उसमें अगर आपने यही काम करना है तो आइदर के आप क्लिनिशियन है, फिर ये तो वो साइड है कि जो ग्रेजुएट है एमबीबीएस का उसे खुद पता होता है कि आगे कितनी स्पेशलिटीज हैं, कुछ का उसे फोर्थ ईयर तक पता होता है, कुछ का फाइनल ईयर तक, और फिर हाउसर के बाद सारी गेम पता लग जाती है। तो ये तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ, लेकिन ये भी डिसाइड करना एक टफ काम है एक डॉक्टर के लिए कि आइदर के वो फिजिशियन होना चाह रहा है, सर्जन होना चाह रहा है, और अगर सर्जन होना चाह रहा है तो किस चीज का सर्जन होना चाह रहा है। मैं बात हूँ दूसरी तरफ, अब जो डॉक्टर नहीं बनना चाह रहा उसे ये क्लियर होना चाहिए कि अब उसने क्या करना है, सिविल सर्विसेज में आना है या कि हेल्थ की ही ब्यूरोक्रेसी में जाना है, ठीक है ना। एक ये बहुत दो आ जाता है और इसके अपने प्रोज कॉन्स हैं, ठीक है ना। फिर इससे हटके अभी जो नया फील्ड इमर्ज हो रहा है जिसे हेल्थ जर्नलिज्म कहा जा रहा है, जिसके बारे में लोगों का बहुत ज्यादा जो है उसकी तरफ नजर नहीं है, जो अभी जो मैं आपके साथ ये सारा एक सेशन रिकॉर्ड करवा रहा हूँ ये भी हेल्थ जर्नलिज्म का ही हिस्सा हो गया ना। एक मैं एक स्टूडियो में आया हूँ और ये चीजें मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इससे हटके इस चीज में बेन था जो है आगे स्कोप है। और अगेन जैसे मैंने अभी बात की थी कि जैसे एक एफएससी 18-19 साल का एक लड़का एफएससी वो एमबीबीएस नहीं कर पाता या कि वो कर भी पाता है तो वो एक अपनी प्रोफाइल जनरेट करे। मैं यही बात इधर भी कहूंगा, अब अगर एक एमबीबीएस में आ गया लड़का या लड़की थर्ड या फोर्थ ईयर एमबीबीएस में, उन्हें चाहिए कि वो अपनी एक सोशल प्रोफाइल, एक डिसेंट सोशल प्रोफाइल जनरेट करें जिसमें दे स्टार्ट एजुकेटिंग, जो सीखा है उसको आगे सिखाएं, ठीक है ना। एक सादा अल्फाज में अगर उन्होंने आज कुछ इलम का एक चंक घर लेके जा रहे हैं तो वो उन्होंने एक टेक्निकल लैंग्वेज और एक अपने टेक्नोक्रेट से सीखा है जो उसका टीचर है, अब उसको वो देखें कि वो कैसे प्रोपोगेट करेंगे आम पॉपुलेशन के लिए। अगला जो दौर है इसमें आपकी अपीयरेंस मैटर्स, ठीक है ना। मैं इस कमरे में बैठा हूँ यूसीपी के, मुझे नहीं पता कि निचले फ्लोर पे कौन सी डिफिकल्टी है, हो सकता है मेरा अपना कोई पुराना क्लास फेलो वहाँ पे किसी जगह पे एसोसिएट हो या कोई एपी हो, लेकिन मुझे चूंकि मैं कनेक्टेड नहीं हूँ उसके साथ मुझे नहीं पता। तो कनेक्टिविटी नेटवर्किंग, ठीक है ना। जब मैं मास्टर हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा था तो हमारे हेल्थ एचआर के एक टीचर थे, मुझे नाम उनका याद नहीं है, ही टोल्ड कि अगर आप डेली के 5 नए लोगों से नहीं मिलते हैं तो आप ग्रो नहीं करेंगे। हमें लगा ये पता नहीं क्या बात की है, लेकिन ये बात बड़ी ट्रू है कि आप अगर डेली के 5 नए लोगों से मिल रहे हैं और अपना उनके साथ इंट्रोड्यूस हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपका जो है सर्कल दैट विल इंक्रीज, ठीक है ना। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो आपको अपने थर्ड ईयर में ही फोर्थ ईयर में ही सोशल प्रोफाइल जनरेट करनी चाहिए, लेकिन वेरी डिसेंट सी और किसी के साथ लिंकअप करके, और उसमें कोई हीरोइक नहीं होना चाहिए चीजें, मतलब उसमें जो आप सिर्फ एजुकेट करें जो आपके पास इल्म है वो उसे फैलाएं तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके लिए फायदेमंद बन जाएगी, टाइम आएगा।
1: बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, आपने बड़ी ही जबरदस्त बात की कि जो आपने अपने टेक्नोक्रेट से सीखा है वो क्योंकि लोगों के मुतालिक है तो लोगों को आसान अल्फाज में बताएं, इससे आपका अपना प्रोफाइल भी बिल्ट होगा और दूसरा आपकी एक्सपर्टीज भी जो है वो इस्टेब्लिश होंगी। तो डॉक्टर साहब लेने जा रहे हैं हम ब्रेक, और ब्रेक में अभी हम चलाने जा रहे हैं थोड़ा सा प्रोग्राम का जो है ना टेम्पो अप करने लगे हैं, तमाशा सॉन्ग है सजाद अली और बोहिमिया का, तो हमारे लिसनर्स जो हैं जो थोड़ी सी अब काउंसलिंग में थे उनका टेम्पो थोड़ा सा हम हाई करेंगे और उम्मीद है कि एनर्जी लेवल भी आपका हाई होगा। और जब आप वापस आएंगे तो हम ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब से डिस्कस करने जा रहे हैं कि नाक कान और गले के क्या वो बड़े बड़े ब्लंडर्स हैं जो कि हम लोग कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें बहुत सारे नुकसान हो रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा।

0: मौसीकी के सुर और ताल, सुर और ताल, ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार, और तकरार। सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास,
1: मस्ती के पास,
0: सिर्फ FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: नशे के मर्ज में मुबतला अफराद दूसरे मरीजों की तरह हमारी तवज्जो और नशे के इलाज के मुस्तहिक हैं। नशे के मर्ज में मुबतला अफराद को तिब्बी मुआयने और इलाज के साथ मुनासिब देखभाल की भी जरूरत है।
1: अद्वियात और नफसियाती तरीका इलाज के जरिए नशे का इलाज मुमकिन है।
0: नशा एक मर्ज, इलाज मुमकिन।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा। हाँ
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
3: खबरदार, छूना मना है।
4: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
5: लिसन, लर्न, डिस्कवर With radio station FM 92.6 UCB के दुनिया।
6: मैं काम करके थक जाती हूँ।
7: उस्ताद जी मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
8: क्या कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें। इनसे इनके ख्वाब, इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी, जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रब्ता करें। वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

0: कुछ जालसाज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट्स हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट्स देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.bk पर चेक करें।
1: सुनना है तो इसे सुनो।

0: आप भी खेल ले।
1: मैं इसके बाद बैटिंग पे जाऊंगा।
0: बाइक चलाना सिखाऊंगा।
1: बाकी?
0: हाँ।
2: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है। डरे नहीं और चीख के कहें,
1: खबरदार, छूना मना है।
3: वजारत इंसानी हकूक, हुकूमत पाकिस्तान। मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।
4: Station of the nation.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: बहुत जल्द साज आपको फ्री सिम कार्ड, मुफ्त फोन कनेक्शन या राशन का लालच देकर आपके फिंगरप्रिंट हासिल कर सकते हैं। ये कीमती डेटा गैर कानूनी सरगर्मियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, लिहाजा फिंगरप्रिंट देते हुए मोहतात रहें। अपने शनाख्ती कार्ड पर रजिस्टर्ड सिमों की तादाद जानने के लिए शनाख्ती कार्ड नंबर 668 पर SMS करें या www.cnic.sims.vk पर चेक करें।
1: आवाज मुनफरिद, हौसले बुलंद और लगन है सच्ची, इसीलिए तो UCP की दुनिया के साथ ये दोस्ती है पक्की। कीप योर ईयर्स हेल्दी विद FM 92.6।

0: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की। तो सुनते रहिए एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया।
1: बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, अस्सलाम वालेकुम सामईन। आप सुन रहे हैं एफएम 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। सामईन करम, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे अहम तरीन उनवान पर जो कि हमारे ज़रूरत भी है और ऐसा दिन, क्योंकि 19 अगस्त का जो दिन होता है वो ख़ास तौर पर इंसानियत के नाम वक्फ किया जाता है और इस दिन का मकसद ये होता है कि इंसानियत के नाम, इंसानियत पैदा करने के लिए, इंसानियत को आपके अंदर उजागर करने के लिए इस दिन को मनाया जाता है, ताकि लोगों को, इंसान को, अगर हम इंसानियत को बाद में बात करते हैं, अगर हम इंसान की डेफिनेशन पढ़ें तो उसमें भी जब तक इंसानियत मुकम्मल नहीं होती तब तक इंसान मुकम्मल नहीं होता। इंसान की पहचान इंसानियत से होती है, इंसान की रिप्रेजेंटेशन इंसानियत से होती है, फलाह से होती है। इंसानियत का लफ्ज़ जो है या इंसान का लफ्ज़ जो है वो इंसानियत से निकला है। दुनिया भर में हर साल 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। ये दिन की जो आगाज है वो किस तरह हुआ उस पर भी नजर डाल लेते हैं। पिछले दिनों भी मैं थोड़ी सी रिसर्च इसी चीज पे कर रहा था और इत्तफाक देखिए कि अगले चंद जो प्रोग्राम है मेरा, उन दिनों के बाद फौरन से मुझे इंसानियत पे मिल गया। और इंसानियत पे प्रोग्राम का मिलना ये है कि इंसान, अगर अब बतौर आरजे बात कर रहे हैं हम आपसे, तो हम भी तो सीख रहे होते हैं, हम भी अपने अंदर वो अनासर पैदा करते हैं कि जो हम आपको सिखा रहे होते हैं। तो ये एक खुदा की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी होती कि आपको ऐसे टॉपिक पे बात करने का मौका मिल जाए। तो ये दिन का आगाज जो है, इस दिन की जो शुरुआत है वो होती है जी 2003 के एक बगदाद में होने वाले धमाके से, जिसका मकसद ये होता है कि वहां पर जो लोग फलाह व बहबूद का काम कर रहे होते हैं, वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं, रेस्क्यू का काम कर रहे होते हैं, और जो वहां पर धमाके में होने वाले जो मुतासिरीन हैं उनकी फलाह का काम कर रहे होते हैं, उनको खराज तहसीन पेश करना। उसी वाके के बाद से इस दिन की जो है वो आगाज होता है। इस दिन, ये दिन जो है वो आलमी तौर पर एक अहमियत का हामिल हो जाता है, आलमी तौर पर रजिस्टर्ड हो जाता है कि हर साल 19 अगस्त के दिन को इंसानियत का, यानी कि वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के नाम से जो है इसको याद किया जाए। इमदादी कामों में जो लोग हेल्प करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान की अगर बात करें तो चीपा जैसे एक बड़े और ईदी जैसे जो हैं जो डिपार्टमेंट्स हैं वो हमारी हेल्थ के लिए, जो लोग मुतासिरीन होते हैं उनको फर्स्ट एड के लिए, जो जलसे जुलूसों में शहीद हो जाते हैं, मारे जाते हैं, जंगों में मारे जाते हैं, उनकी लाशों के लिए, और बाकी मामलात में लोगों को, मुतासिरीन को किसी भी किस्म के, उसमें से दीनी मजहबी, उसमें से आपके फिके को, उसमें से आपके मुल्क को छोड़कर सब चीज़ों को पसे डालकर आपकी फलाह के लिए जो आगे हाथ बढ़ता है, उस हाथ को इंसानियत कहते हैं। पिछले दौर की अगर हम बात करें तो बहुत सी जंगों में बहुत से लोगों को जो है वो नुकसान हुआ, बहुत से, आजकल की अगर बात करें तो आज से कुछ अरसा पहले जब दहशतगर्दी के कुछ वाकयात होते थे तो उनमें भी जहां पर इंसानियत की जरूरत पड़ती थी हाथ बढ़ाने की, तो बहुत सारे ऐसे हीरोज होते थे, ऐसे नाम होते थे, ऐसी वेलफेयर फाउंडेशन होती थी जो अपना हाथ सबसे पहले आगे करती थी। बहुत सारी चीजें मैं पिछले दिनों में भी पढ़ रहा था कि आजकल के दौर के अंदर हमें न जाने क्या हो गया है, हम हर वाक्य को सबसे पहले किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ाने की बजाय उस वाक्य को रिकॉर्ड करने के लिए हाथ में पकड़कर मोबाइल आगे कर देते हैं। लेकिन अफसोस कि हम अपना हाथ क्यों नहीं किसी के हाथ में देते कि जो बेसहारा हो, जिसको जरूरत हो आपकी मदद की, जिसको जरूरत हो आपके सहारे की, जिसको जरूरत हो आपके आगे बढ़कर उसको संभालने की। लेकिन हम आजकल इंसानियत से थोड़ा सा जो है वो पीछे पुश्त होते नजर आते हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि आजकल रिसर्च जो है वो ये इंसानियत पे ही इत्तफाकन चल रही थी। तो एक जगह पे एक मैं वाकया उसको भी यहाँ पे कोट करूंगा कि आग लगने का वाकया होता है और उस आग लगने के वाकये में बहुत सारे ऐसे दोस्त होते हैं, अजीज होते हैं जो उस वक्त इर्द गिर्द मौजूद होते हैं, लेकिन न जाने हमें क्या हो गया है, न जाने हमारे अंदर इंसानियत शायद के खो गई है कि वो लोग उस अपने अजीज की मदद करने की बजाय, किसी रेस्क्यू को बुलाने की बजाय, फायर ब्रिगेड को बुलाने की बजाय अपना मोबाइल ऑन करते हैं और कंटेंट क्रिएशन का जो है वो सोच बैठते हैं। तो इस दिन का मकसद क्यों जरूरी था, क्यों, क्या कोई दिन इंसानियत के साथ होता है या इंसानियत का कोई दिन होता है? लेकिन इस चीज को बनाने का मकसद, इस चीज को मनाने का मकसद ये था कि लोगों में आगाही पैदा की जाए कि इंसानियत नाम की भी बहुत सारी जो चीजें हैं, बहुत सारी जरूरतें हैं, और वो भी होती हैं जो कि आप बतौर इंसान हमें उसमें पार्टिसिपेट इस तरह इस अंदाज के साथ करना चाहिए। पाकिस्तान में बहुत बेहतरीन जो फलाही तंजीमें हैं उनमें बहुत से नाम आ जाते हैं, और सबसे बढ़कर जो हर मुश्किल के अंदर सबसे अव्वल होती है पाकिस्तान के हर शहर के अंदर, हर सूबे के अंदर, ईदी फाउंडेशन जैसी जो फाउंडेशंस हैं, जो एक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बगैर किसी रंगो नस्ल की, बगैर किसी मजहब की तफरीक किए बगैर आगे बढ़ती हैं, और हमारा जो है वो हर मुश्किल वक्त में कुदरती आफत हो, सैलाब हो, जलजला हो, कोई इंसानी भूख से बहरान हो या फुकदान हो खुराक का, ये इस तरह की बहुत बेहतरीन पाकिस्तान में ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आगे बढ़कर काम देती हैं, हेल्प करती हैं। जिस तरह 2022 में सैलाब आया, बिल्कुल हम करीब की बात करते हैं, तो उन दिनों के अंदर इतने लोग मुश्किलात का शिकार थे, यकीन कीजिएगा कि मैंने खुद इस चीज को नोट किया, रिकॉर्ड किया उस प्रोग्राम के अंदर, कि लोगों के पास एक वक्त का खाना भी मुश्किल था। लेकिन बहुत सारी फलाही तंजीमें वहां पर भी हमें काम करती नजर आती हैं, बहुत सारी फलाही तंजीमें हमें वहां पर भी आगे नजर आती हैं, और फिर सबसे बढ़कर इंसानियत नजर वहां पे आई जब इनफरादी तौर पर कुछ स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे अपनी पॉकेट मनी से उन इलाकों के अंदर, लाहौर के चूंग के इलाके के अंदर, उन बेसहारा लोगों का सहारा बनते हुए नजर आए। यहाँ पे और दिल को खुशी हुई, यहाँ पे और पता लगा कि यार इंसानियत अभी भी जिंदा है, लेकिन आगाही की जरूरत जा बजा पड़ती ही रहती है। बहुत सारे क्लाइमेट चेंज इफेक्ट्स जब होते हैं उनमें हमें बहुत ज़रा, जिस तरह आजकल बिल्कुल हम करीब की बात करते हैं कि इंडोनेशिया के अंदर जो है शदीद जलजला पिछले दिनों में आया, और उसमें कई लोग जो हैं वो वहां पे जो है वो जान की बाजी जो है वो हारे, लेकिन वहां पर उन लोगों की हेल्प करने के लिए कुछ ऐसी फाउंडेशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद थी जिनके पास ना कोई उनकी शनाख्त थी, ना उनको जरूरत थी कि वो हिंदू हैं, वो मुस्लिम हैं, वो क्रिश्चियन हैं, वो कौन हैं। सिर्फ अगर उन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस के पास था तो ये था कि इनकी मदद करनी है, उनके पास था तो ये था कि इन लाशों को किस तरह से उनके अपनी फैमिलीज के पास पहुंचाना है, इनको किस तरह से स्कैन करना है, कौन है ये लोग, किस तरह से उनकी मदद करनी है, सिर्फ उनके पास ये था। उन्हें ना इस चीज की जरूरत थी कि इसका आईडी कार्ड देखकर ये देखा जाए कि ये कौन है, ना उनको जरूरत थी कि ये देखा जाए कि ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन, ना उनको ये था कि ये मुश्किल में है, इसकी हेल्प करनी है, ये परेशानी में है, इसकी हेल्प करनी है। तो ये सारे जब मिल जाते हैं, फिर इसमें बहुत एक बड़ा किरदार इस दिन के अंदर इंसानियत की अगर बात करेंगे तो ब्लड डोनर्स का आता है। पाकिस्तान में गाहे बगाहे जो हैं वो सेमिनार सेशंस होते रहते हैं जी, कि ब्लड के ऊपर जो है वो ब्लड डोनेट करने वाली जो वेलफेयर्स हैं वो, उनका नाम जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है इस दिन के अंदर, क्योंकि ब्लड वो चीज़ है और उन पेशेंट्स को इस चीज़ का एहसास होता है, थैलीसीमिया जैसे मूजी मर्ज के अंदर जो बच्चे मुबतला होते हैं, या कैंसर जैसे मूजी मर्ज के अंदर जो बच्चे मुबतला होते हैं, जो लोग मुबतला होते हैं वो इस दर्द को बखूबी जान सकते हैं, और वो इन ब्लड डोनेट करने वाले हीरोज की जो अहमियत है उसको खसूसी तौर पर याद रखते हैं, क्योंकि ये वो जंग है ब्लड के दौरान जो होने वाली, ब्लड कैंसर के दौरान, थैलीसीमिया के दौरान होने वाली जंग है वो इतनी तकलीफ दे होती है, और अगर उनमें ब्लड की जो डोनेशन है वो ना की जाए तो वो बच्चे अपनी जान से हाथों बैठ सकते हैं। तो ये अहमियत ब्लड डोनर्स की भी वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे के ऊपर किसी सूरत भी पसे पुश्त नहीं डाली जा सकती, इनकी बहुत अहमियत है। और यहाँ पर जी वक्त होता जाला जा रहा है जी ब्रेक का, एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, सुनते रहिए FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: सिक्स बोरियत को भगा दो।
1: वेलकम बैक सामईन, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया और मैं हूं आपका मेज़बान हमज़ा अहमद रज़ा। सामईन कराम, हम बात कर रहे थे कि आज 19 अगस्त को दुनिया भर में इंसानियत का एक दिन मनाया जाता है, जिसका मकसद ये होता है कि इंसानियत और फलाह बहबूद के लिए करने वाले काम करने वाले हीरोज़ को याद करना और इस चीज़ के बारे में आगाही देना कि इंसानियत कितनी ज़रूरी है। अगर इंसान इंसानियत के बग़ैर है तो वो खोखला है। इंसान के अंदर अगर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है तो इंसान मुकम्मल कामिल नहीं है, क्योंकि इंसानियत ही इंसान की पहचान है। बाज़ औक़ात शख्स तो मर जाता है लेकिन शख्सियत ज़िंदा रह जाती है, किरदार ज़िंदा रह जाते हैं, काम ज़िंदा रह जाते हैं। उन्हीं में ही बहुत सारे डिपार्टमेंट पाकिस्तान में काम कर रहे हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, लोगों की सेहत के ऊपर, लोगों मुतासरीन को ख़ास तौर पे दर्द के अंदर जब कोई तकलीफ़ में होता है तो आगे बढ़ने वाला हाथ इतना खूबसूरत लगता है जिसकी कोई हद नहीं होती। उसी पर ही बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान के डिपार्टमेंट्स, जिन्हें मैं ख़ास तौर पर खराज तहसीन पेश करूँगा, जिसमें सबसे पहले जो इसमें हम बात करते हैं रेस्क्यू 112 की। रोड के ऊपर होने वाला हादसा हो या किसी बिल्डिंग में लगने वाली आग हो या किसी छत तले दबे हुए मुतासरीन हो या किसी गाड़ी के नीचे कुचला हुआ किसी का बाप, किसी का भाई, किसी की बहन या बेटी हो, तो सबसे पहले जो याद आता है उन लोगों को, उन मुतासरीन को, वो रेस्क्यू 112 का इदारा है। और वो बहादुर लोग, वो बहादुर सिपाही, इनको सिपाही ना कहें तो क्या कहें, वो लोग के जो सबसे पहले कुछ लम्हों के अंदर आपकी जिंदगी बचाने के लिए पहुंच जाते हैं। और रेस्क्यू 112 का वो इदारा आज के दिन खसूसी तौर पर खराज तहसीन के लायक है। वो लोग, बल्कि हम अपनी बात करें, अगर मैं अपनी बात करूं तो तकलीफ ज्यादा कट लगा हुआ अगर किसी का हम जिस्म देखते हैं ना तो बड़ा एक खौफनाक सा मंजर होता है। किसी के खून को देख लेते हैं ना तो मैं अगर अपनी बात करूंगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है, मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, ब्लड प्रेशर बास टाइम जो है वो डाउन हो जाता है। लेकिन उन बहादुर हीरोज को सलाम है कि जिन्होंने इतने शदीद मुतासरीन को, इतने शदीद जख्मी लोगों को, मुतासरीन को देखा और फिर उनकी खिदमत किए, उनकी हेल्प के लिए आगे बढ़े। इस जान बचाने की कीमत अगर देखी जाए, लोग कहते हैं जी सैलरीज हैं उनकी, क्या किसी की जान बचाने से ज्यादा भी कोई अहमियत की हामिल है? क्या उनकी सैलरीज इस चीज के बराबर आ सकती है कि वो आपके जख्मी बच्चे को, आपके जख्मी बेटे को, आपकी जख्मी बेटी को फिल फॉर आकर बचाएं? और सबसे पहले आपके जहन में क्या ख्याल आता है हर हादसे के बाद कि 112 की कॉल की जाए? तो वो लोग आज के दिन में इंसानियत के लिए काम करने में सरे फहरिस्त नजर आते हैं। उसके साथ साथ हम बात करते हैं, बहुत सारे नाम भी मेरे जहन में आ रहे हैं, उन पे भी बात करेंगे, लेकिन फायर ब्रिगेड का जो एक इदारा है जो आग में झुलसे मुतासरीन को सबसे पहले बचाने के लिए आ जाता है, बल्कि मैं इसकी मिसाल आंखों देखा एक वाकया सुनाता हूँ कि आज से कुछ तकरीबन कुछ 6 माह पहले की बात है कि हमारे घर के जो है वो 2 घर छोड़कर आग लग जाती है। आग लगने का वाकया इतना शदीद होता है कि कुछ लम्हों के अंदर जो है आग बढ़ना शुरू हो जाती है, और एक घर और फिर हमारा घर था। यकीन कीजिएगा कि उस वक्त लोगों की जो ख्यालात थे, लोगों की जो सोच थी, वो इतनी परेशान कौन थी कि यकीन कीजिएगा कि लोगों के चेहरों से उस वक्त पसीने जो है वो छूट रहे थे, लेकिन एक उम्मीद की किरण अभी बाकी थी। वो बहादुर लोग, वो बहादुर सिपाही, वो फायर ब्रिगेड का अमला कि जिसका इंतजार था सबको, लोग बेचैनी में भी थे, परेशानी में भी थे, लेकिन एक चीज याद रखे हुए थे कि वो लोग आ सकते हैं, वो लोग आ रहे हैं, इसी उम्मीद में थे कि वो लोग आ रहे हैं जो हमारी हेल्प करेंगे, जो खुद को, अपनी जान को खतरे में डालकर शदीद आग में लिपटे हुए घर के अंदर जाएंगे और हमें जो है हमारे घर को महफूज करेंगे। हमारी प्रॉपर्टी उनकी नहीं है, हमारा घर उनका नहीं है, हमारी चीजें उनकी नहीं है, लेकिन उनकी ड्यूटी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उन्होंने अपना आप वक्फ कर दिया इंसानियत के लिए। उन लोगों को न ये खतरा होता है कि घर में क्या हो जाएगा, उनको ये खतरा नहीं होता कि क्या हो सकता है। उनको पता है कि घरों में आग लगी हुई है, पाइप भी पड़े हैं, सिलेंडर्स भी पड़े हैं, गैस के कनेक्शन भी हैं, लेकिन उनके हाथ में कोई वो नहीं होती कि वो उनको आग नहीं लग सकती, उनको न जाने वो झुलस नहीं सकते, लेकिन उनको ये होता है कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी ड्यूटी है कि हमने किसी के घर को आग से बचाना है, हमने किसी की माँ बहन बेटी जो घर के अंदर फंसी हुई है किसी किचन के अंदर आग के अंदर, हमने उसे महफूज करना है। तो ये जो मयार होता है, ये जो एक इंसानियत के लिए वक्फ करना करना होता है, ये आज के दिन हमें सिखाया जाता है, आज के दिन एक अवेयर किया जाता है कि यार ये भी वो हीरोज हैं जिन्होंने अपना सब कुछ जो है, अपनी लाइफ सबसे बढ़कर अपनी जिंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर दी। उसके हाथ में उस फायर ब्रिगेड का जो एक मुलाजिम है, उसके हाथ में एक आग से बचने के लिए पानी वाला पाइप होता है, ये कोई आसमान से उतरी ऐसी शय नहीं होती कि जिससे वो जल नहीं सकता, वो भी जल सकता है, वो भी इंसान है, उसके घर में भी फैमिलीज है, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी बीवी है, उसकी भी माँ है, उसका भी इंतजार किया जा रहा है, जिस तरह हमारे घरों में हमारा किया जाता है उसका भी किया जाता है। तो यहाँ पर तो वो भी इंसानियत की खिदमत के लिए जो सर्फ किया जाता है, जो लोग करते हैं वो इंतहाई अहमियत के हामिल है। और फिर बहुत सारे नाम जिसमें सबसे बढ़कर अब्दुल सत्तारीदी साहब, जिन्होंने अपनी जिंदगी इसी चीज के अंदर निछावर कर दी कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न था कर रो बया। और दर्द दिल वो चीज है जो जिस इंसान में हो जाती है वो लोगों में यूनिक और मुनफरिद हो जाता है। किसी का एहसास, किसी की हमदर्दी अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए, या कोई ऐसा शख्स बन जाए जो किसी को चुभती हुई सुई जो है वो भी देख के तकलीफ में आ जाए, तो वो बड़ा अजीम इंसान बन जाता है, क्योंकि वो सबसे पहले अपना हाथ किसी की खिदमत के लिए आगे बढ़ाता है। और इंसानियत जो है वो जिंदा रहनी चाहिए, इसके बगैर किसी भी किस्म का जो है इंसान का जो है वो वजूद ही मुकम्मल नहीं होता। यहाँ पर वक्त होता है जी एक ब्रेक का, म्यूजिकल ब्रेक का। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: Broadcasting from University Studios,
1: where knowledge is empowerment.
0: This is
2: 92.6.
3: सामने यहाँ पे बात कर रहे थे हम जी, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना अतात के लिए कुछ कम न था करो बयां। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं था कि इंसान एक माशर्ती हैवान है और हर जगह पे कदम कदम पे उसे किसी न किसी दूसरे इंसान की जरूरत पड़ती है। आज 19 अगस्त आज के दिन को हम खास तौर पर वक्फ कर रहे हैं इंसानियत के नाम, और इसी प्रोग्राम में इसी टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे थे ब्रेक से पहले। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स की हमने बात की जो कि इंसानी फलाह बहबूद के लिए काम कर रहे होते हैं और खिदमत खल्क के लिए काम कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे नाम जो यहाँ पे मेरे जहन में आ रहे हैं उनमें डॉक्टर उत्फाओ, जिन्होंने जजाम के मरीजों के लिए बहुत काम किया, जिन्होंने पाकिस्तान में आई कराची के अंदर जब उन्होंने कयाम किया और हालात देखे कि यार ये कितनी मुश्किल में है, तो उन्होंने अपना आगे वापस जाने का इरादा जो है वो तर्क किया और वहां पे खिदमत खल्क स्टार्ट कर दी और अवाम की, लोगों की बेहतरी के लिए, जजाम के मरीजों के लिए जिनके पास कोई नहीं आता था, जिनको एक बीमारी और ऐसी ना जाने कहना नहीं चाहिए, बुरी बीमारी समझ के लोग पीछे हट जाते थे। और जजाम की बीमारी वाकयातन बहुत दर्दनाक होती है, जिसमें इंसान का जिस्म जो है वो गलना शुरू हो जाता है, उसमें से स्मेल आनी शुरू हो जाती है। बाज़ औक़ात तो ऐसे लोग भी हैं जिनके अपने छोड़ जाते हैं, लेकिन डॉक्टर उत्फाओ इंसानी शक्ल के अंदर एक मसीहा, जिन्होंने अपना काम इस बेहतरीन अंदाज के साथ किया कि बहुत सारे लोगों को जो है वो जजाम के मरीजों के लिए इलाज जो है वो वहाँ पे स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर उत्फाओ जो हैं वो 1960 में पाकिस्तान आई और कराची के अंदर मैरी एडलीड लेप्रोसी सेंटर जो है उन्होंने कायम किया, जिसमें जजाम के मरीजों का इलाज जो है वो वहाँ पर किया जाता था और बिल्कुल बगैर किसी पैसों के, बगैर किसी चार्जेस के, बिल्कुल फ्री जो है वो उनका इलाज किया जाता था। जब वो पाकिस्तान में लैंड किया उन्होंने और जब पाकिस्तान को देखा कराची के अंदर, तो बहुत सारे मरीज थे जो इस चीज से तड़प रहे थे, इस मुश्किल से दोचार थे, तो वो उनसे देखा ना गया। ये इंसानियत होती है। अलबत्ता वो मुस्लिम तो नहीं थी, अलबत्ता के वो दायरा इस्लाम में तो नहीं थी, लेकिन उनको इंसानियत का जो तोहफा था वो मेरे रब ने अता किया हुआ था। उनके पास इंसानियत थी तो उन्होंने अपना उसी जगह पर जो है वो एक सेंटर कायम किया जहां पर इलाज स्टार्ट हो गया और कोढ़ के जो मरीज हैं 50 साल से ज्यादा अरसे तक उन कोढ़ के मरीजों की जो है वो बहाली की है। कितना बड़ा अरसा उन्होंने जो है इस चीज में वक्फ किया और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इस चीज को सराहते हुए 1996 में कोढ़ के मरीजों पर पाकिस्तान में काबू पाने वाला जो है वो मुल्क करार दे दिया। 1996 के अंदर पाकिस्तान जजाम से, कोढ़ से फ्री मुल्क करार पाया और किन की बदौलत? वो इंसानियत का एक चमकता सितारा थी डॉक्टर उत्फाओ। ये बहुत बड़ा नाम है और इनको पाकिस्तान ने मदर टेरेसा का जो लकब है वो भी दिया, क्योंकि अलकाब जो होते हैं वो बहुत सारी चीजें देख कर दिए जाते हैं। अलकाबात जो होते हैं वो किसी की जदोजहद, किसी की कोशिश, किसी की मेहनत को देख कर दिए जाते हैं, तो इनकी मेहनत, इनकी जदोजहद जो थी वो एक बड़े सिपाही की तरह थी। इन्होंने किस अंदाज के साथ, किस लहजे के साथ, किस नरमी के साथ उन बीमार मरीजों के साथ पेश आई, शफकत के साथ पेश आई और अपने अंदर की इंसानियत को उनको दिखाया और उन लोगों को जो है वो जजाम का इलाज, जजाम का ट्रीटमेंट, क्योंकि ये डॉक्टर थी, इनके पास इल्म था, इनके पास नॉलेज था, ये उस बीमारी पे अबूर रखती थी उसके इलाज पे, तो इन्होंने डेफिनेटली उनका जो अपना सारा इल्म है वो वक्फ किया और जिस तरह से एक बेहतरीन नाम पाकिस्तान के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए इनका बहुत बड़ा किरदार था डॉक्टर उत्फाओ का। और इस तरह के नाम जो है वो आज के दिन जरूर याद करने चाहिए, क्योंकि आज का दिन उन लोगों को याद करने का दिन होता है कि जिन्होंने इंसानियत के लिए अपना आप सर्व किया होता है। उसके बाद पाकिस्तान में अगर हम बात करें, पाकिस्तान के एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो है, बड़े लोग जो हैं इंसानियत के लिए काम करने में, उनमें अब्दुल सत्तार इदी साहब का जो नाम है वो भी मेरे जहन में सर फहरिस्त लगता है। और हर बच्चे को अगर देखा जाए पाकिस्तान में, हर बच्चे को एक फिंगर टिप्स पे याद होता है। जब भी वेलफेयर की बात आती है, जब भी चैरिटी की बात आती है, जब भी चैरिटी की एग्जाम्पल देनी आती है, जब भी कहाँ पे किसी को खिदमत खल करते हुए बताना होता है, तशबीह देनी होती है, तो डॉक्टर अब्दुल सत्तार इदी साहब का नाम जो है वो सर फहरिस्त नजर आता है। हर बच्चे کو یاد ہے, فنگر ٹپس پہ یاد ہے. بعض اوقات میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی, میں بلکہ تھوڑی سی فنی ہے لیکن اگزامپل بہت مزے کی ہے, کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی کام کرتے دیکھ لے, کسی کو کوئی خدمت کرتے دیکھ لے, یا کسی کو کہتا ہے تو وہ آگے سے کہتا ہے اڈا تو رہندا نہیں عبد ستاری تھی, تو وہ بات ہے کہ ہمارے مائنڈ کے اندر اگر چیریٹی کی بات ہوتی ہے تو آٹومیٹکلی کلک کر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے جی یہ شخص ہیں جو انسانیت کا جو ہے وہ قیام کر رہے ہیں. 1951 میں کراچی کی ایک چھوٹی سی ڈسپینسری سے عبد الستاریدی صاحب نے جو ہے اس ایدی فاؤنڈیشن وغیرہ کا جو ہے وہ سسٹم سٹارٹ کیا 1951 سے. اور اب کی اگر بات کریں تو یہ ان کا لگایا ہوا جو ایک شجر تھا, چھوٹا سا پودا تھا, آج وہ درخت بن چکا ہوا ہے, آج اتنا بڑا سسٹم بن چکا ہوا ہے کہ رضاکارانہ طور پر جو ہے جہاں پر لوگوں کو مشکل آتی ہے, جہاں پر لوگوں کو ضرورت پڑتی ہے, وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور عوامی خدمت کے لیے اور عوامی فلاح و بہبود کے لیے, متاثرین کو جو ہسپتالوں تک منتقل کرنے کے لیے, ہسپتالوں لوگوں کو علاج کروانے

जो किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखता है, इंसानियत उस शख्स के लिए भी है जो किसी दूसरे फिरके से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि इंसान को इंसान की ज़रूरत पड़ती है। और जो खिदमत है, जो फलाह व बहबूद का सिलसिला है, वो बिल्कुल मोहताज नहीं है किसी भी चीज़ का। हम बात करते चलते हैं तो मैसेज की तरफ आते हैं कि इंसान जो है, अगर हम अपनी बात करें, आज का जो पैगाम है वो यही है कि इसके पैगाम की तरफ बढ़ते बढ़ते बात करते चलें कि हमें भी जहाँ पर भी लगे कि किसी को हमारी ज़रूरत है, तो यकीन कीजिएगा अगर आप दो कदम बढ़कर उसकी खिदमत करेंगे, दो कदम बढ़कर उसके लिए अपने आप का, अगर आपके पास इल्म है तो वो भी तो आप बांट के लोगों का सहारा बन सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है तो वो भी कुछ भी नहीं है, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, किसी डूबते को आपके हाथ की ज़रूरत पड़ती है, तो क्यों हम हाथ पीछे कर जाते हैं? ज़रा सोचिएगा इस पे। और ये हाथ जो है ये अगर बढ़ जाए तो उसके बाद अल्लाह की तरफ से जो अजर व सवाब मिलता है वो एक अपना मुनफरद मकाम रखता है। और इस दिन को, इंसानियत के आज के दिन को, हम इसी चीज़ के साथ यहाँ पर प्रोग्राम को भी ख़त्म करते हैं कि जहाँ पर भी हम आज के दिन अहद करते हैं कि जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत पड़ती है इनफरादी तौर पर इंसानियत के लिए ख़ुद को वक्फ करने की, तो हम अहद करते हैं कि सबसे पहले बढ़कर आगे हम अपना हाथ आगे करेंगे और हर एक डूबते को, हर एक मुश्किल को जहां तक हो सकेगा हम मददगार साबित होंगे। उसके लिए आज का प्रोग्राम अपने अख्ताम को पहुंचता है और अपने मेज़बान अफजा अहमद रजा को दीजिएगा इजाजत। इंशाल्लाह ताला अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

0: मुझे डायबिटीज? मैं तो बड़ा फिट हूँ। डायबिटीज तो मोटे लोगों को होती है।
1: हम तो खालिस खुराक खाते हैं, हमें नहीं होगी डायबिटीज।
2: डायबिटीज वो तो मीठा खाने से होती है, इसीलिए मीठा खाती नहीं।
0: डायबिटीज तो सिर्फ बुढ़ापे में होती है।
3: मैं भी यही सोचता था, मगर सच तो ये है कि पाकिस्तान डायबिटीज के हवाले से दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है। इसीलिए अपनी सेहत पर गौर करें। अगर आपको इनमें से कोई भी अलामत महसूस हो रहे हो तो फौरन अपने डॉक्टर से मशवरा करें। डायबिटीज वसाइल और आमदनी से नहीं बल्कि एक्शन से कंट्रोल हो, यानी मतवाजन गजा, रोजाना एक्सरसाइज और डॉक्टर की तजवीज की हुई दवा। याद रखिए, अगर डायबिटीज से जीतना है तो वक्त पर एक्शन लेना है।

Ladies and gentlemen, we are live now. नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।

0: मुझे जरा सी गलती पर बहुत मारते हैं।
1: क्या कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना सरासर ज्यादती नहीं? क्या ये उम्र इनके काम करने की है या पढ़ने और हंसने खेलने की है? इन पर काम का बोझ ना डालें, इनसे इनके ख्वाब इनका बचपन ना छीने। पाकिस्तान का आईन और कानून हर बच्चे को जहनी जिस्मानी और तालीमी हक फराहम करता है। 14 साल से कम उम्र बच्चों से मुशक्कत लेना एक काबिल सजा जुर्म है। आइए बच्चों से मुशक्कत से इनकार करें। बच्चों से मुशक्कत की इतला देने के लिए हमारी हेल्पलाइन 1099 या हेल्पलाइन ऐप 1099 पर रابطہ करें। वजारत इंसानी हुकूक, हुकूमत पाकिस्तान।

WHO की हालिया तहकीकात के मुताबिक पूरी दुनिया में 2.2 बिलियन अफराद आंखों के मसाइल से दोचार हैं। लिहाजा आप भी एहतियाती तदाबीर अपनाकर अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अपनी आंखों को गर्दोगुबार और आलूदगी से बचाएं। कंप्यूटर पर काम करते हुए मुसलसल आंखें कंप्यूटर पर मरकूज ना रखें। आंखों का बाकायदगी से मुआयना करवाएं। बच्चों को नोकीली चीजों से हरगिज न खेलने दें। मोबाइल के बेजा और मुसलसल इस्तेमाल से गुरेज करें और घर आते ही फौरन आंखों को ताज़ा और ठंडे पानी से धोएं। इसके अलावा खाने में मुतवाजन ग़िज़ा और विटामिन ए से भरपूर खुराक इस्तेमाल करें। ये पब्लिक सर्विस मैसेज महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से पेश किया जा रहा है।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उतने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिब इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।

0: If you want to stay connected to the latest updates of your country, stay connected to University of Central Punjab FM 92.6 UCP Ki Duniya.
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीपी की दुनिया प्रोग्राम नखले अदब में आपको दोबारा खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं सामिया। सामिया, हम बात कर रहे थे कि आपने बताया कि बहुत वास्ट डोमेन है लिटरेचर के अंदर भी, तो मेरा भी इत्तेफाक हुआ जब ऐसे इवेंट्स को अटेंड करने का, तो एक तो मैंने देखा कि यहाँ पे अवाम की तादाद ही बहुत कम होती है, तो अच्छी बात है कि जो लोग मेरे साथ बैठते थे वो वाकई ही सुनने वाले और पढ़ने वाले लोग होते थे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप एज ए रिपोर्टर जाती हैं और आपका तो आप लोगों से बातचीत भी होती होगी, तो क्या व्यूज सुनती हैं आप ऐसे इवेंट्स के बारे में, और क्या यूथ आपसे बात किस बारे में करती है, और जो थोड़े एजिड लोग हैं जिन्होंने किताबों का दौर देखा है वो आपसे किस तरह बात करते हैं और उनकी क्या राय होती है इस बारे में?
2: अच्छा, जब हम ऐसे इवेंट्स अटेंड करते हैं तो सबसे पहले तो जिसमें कहते हैं बुक की इशाअत करना, बुक के बारे में जिसमें आप वो इंट्रो देते हैं और ये सब कुछ, तो सबसे पहली बात ये कि वहाँ पर मैं जो देखती हूँ वहाँ की यूथ और वो जो राइटर होते हैं बड़े डिस्कनेक्ट होते हैं आपस में ना, मतलब एक सर्टेन टाइम वो बात को बहुत ज्यादा ऐसे बढ़ा देते हैं, इतने क्रेडिट्स देने में टाइम लगा देते हैं कि लोग जो है ना वो इंट्रो से हट जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि जब भी कोई बुक शाया होती है तो उस पर लोग बड़ा वो करते हैं, वो ज्यादा टाइम जो है ना वो क्रेडिट लाइन्स देने में ही लगा देते हैं कि फला मेरा टीचर, उसने मुझे ये किया, वो इतना टाइम उसमें। और आप, मैं इसको कहीं ना कहीं खुशामद भी समझती हूँ क्योंकि वो सामने साफ नजर आ रहा होता है कि ये क्या चल रहा है।
1: सॉरी मैंने आपकी बात कट की, लेकिन शायद यूथ इसलिए डिस्कनेक्ट हो जाती है क्योंकि हमारा स्क्रीन टाइम बहुत कम हो गया, हम लंबी बात सुन ही नहीं सकते।
2: बिल्कुल ऐसा ही है। और लेकिन ये मैं मानती हूँ कि वो ठीक है भाई, वो लैग करते हैं इस बात में, वो इतने क्रेडिट्स देने में कैसा लगता है कि हम किसी को बस क्रेडिट देने ही आए हैं। बुक की बात कम होती है, बुक के बारे में ज्यादा से ज्यादा हम यही सुनते, ये तो फिर जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। लेकिन 20 से 25 लोग जिनको हम नहीं जानते, हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे थे, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी कोई ऐसी तकरीब रखें तो आप टू द पॉइंट रहें। जितना आप टू द पॉइंट रहेंगे आप क्यूरियोसिटी तो पैदा करें ना स्टूडेंट्स में या यूथ में कि इसमें क्या है, आप उस पर बात करें ज्यादा, तो यहाँ पे हम बहुत लैग कर जाते हैं इस चीज में ना।
1: ठीक है, चूंकि आपका ताल्लुक मीडिया से है तो अगर हम अब दूसरी तरफ आएंगे तो हमने बुक फेयर्स की बात कर ली, कैसे हमारी जो एंटरटेनमेंट की दुनिया है उसमें लिटरेचर हमें हेल्प कर सकता है थ्रू मीडिया?
2: बिल्कुल, मीडिया भी एक बड़ा वास्ट सा सब्जेक्ट है इसमें, जहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया आ जाता है, जिसमें न्यूज़ चैनल्स आ जाते हैं, वहाँ पे एंटरटेनमेंट का बहुत बड़ा किरदार है सोसाइटी को मोल्ड करने में।
1: बिल्कुल,
2: तो हम ये देखते हैं कि जब हम, बिल्कुल लिटरेचर और मीडिया लाजिम व मलजूम है, जब भी आप कोई स्टोरी लाइन जिस पे एक ड्रामा सीरियल या फिल्म या कोई भी प्ले टैबलो जिसकी बुनियाद होती है वो लिटरेचर के बगैर अधूरा है।
1: बिल्कुल,
2: और आप जैसे कि जानती हैं कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज और इंडिया में भी बहुत पसंद की जाती है और इसके अलावा दीगर ममालिक में भी बहुत ज़्यादा हमारी रेटिंग्स आती हैं। उसकी वजह ये है कि इस वक्त हमारे पास चंद बहुत अच्छे राइटर्स मौजूद हैं, और जब हम राइटर्स की बात करते हैं तो वो लिटरेचर से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, उनकी ज़ुबान, उनकी उर्दू। आप कभी देखिएगा इंडिया के ड्रामास और हमारे पाकिस्तानी ड्रामास इतने मुख्तलिफ हुए हैं, उसमें जो लैंग्वेज यूज़ होती है, जो एक खूबसूरत अंदाज में हम वो सुनते हैं कि हमें अच्छा लगता है, तो इंडिया इसी वजह से ही तो हमें बड़ा एक्नॉलेज करता है ड्रामास में। वो कहते हैं कि हम फिल्म्स बहुत अच्छी बना लेते हैं लेकिन हम ड्रामा जो है वो पाकिस्तान के मुकाबले पे नहीं आ सकते। तो बिल्कुल ऐसे ही है, जब भी कोई राइटर लिखता है तो राइटर के लिए इम्पॉर्टेंट है उसको लिटरेचर का पता, उसको बैकग्राउंड का पता, उसने कनेक्ट करना, उसने लोगों तक एक चीज़ कन्वे करनी, और उसको पता है कि उसकी ऑडियंस कितनी लार्ज है, तो उसके ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है। उसमें ये भी आ जाता है कि एक तो नॉलेज हो, दूसरी बात ये कि आप आपने कैसे अल्फाज का चुनाव किया है, आपकी वोकैबलरी कैसी है, आपकी अदायगी कैसी है। और उर्दू जब हम देखते हैं, जब मैं अक्सर फील्ड में जाती हूँ ना तो छोटे बच्चे होते हैं, मैं उनसे अगर बात करना चाहूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है, उनके पेरेंट्स ये कहते हैं शी कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश, सो ओके, तो मुझे बड़ा वो अजीब सा लगता है। फिर मैं उनसे पूछती हूँ, अच्छा शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, वो कहते हैं शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, शी इज़ फ्रॉम दिस एंड दैट एंड दैट। तो ये आपने इतना कॉम्प्लेक्स बना लिया है कि मैं एक 3 साल की बच्ची से बात नहीं कर सकती पाकिस्तान में रह के उर्दू में, मतलब आपने इसको इतना स्टेटस को बनाया, और ऑब्वियसली ये सोसाइटीज़ जो हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ ऐसे ड्रामाज, ऐसा लिटरेचर आना चाहिए जिसमें हम सोसाइटी को मोल्ड करें, हम ज़ुबान को सिर्फ ज़ुबान की हद तक रहने दें, उसको आप स्टेटस सिंबल ना बनाएं। और उर्दू जितनी खूबसूरत, जितनी वास्ट ज़ुबान है, इसमें जैसे एहसासात को आप इजहार कर सकते हैं और जैसे लफ्ज अदा कर सकते हैं, वो तो आप अपने बच्चों के साथ बड़ा जुल्म करेंगे अगर आप उन्हें उर्दू से आशना नहीं करेंगे। तो ठीक है, हमें बिल्कुल इंग्लिश बोलनी वक्त की ज़रूरत है ऑब्वियसली, लेकिन आप ऐसे बिल्कुल ना करें कि शी कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश, व्हाई शी कैन ओनली स्पीक इन इंग्लिश,
1: जबकि उनके घर में भी उर्दू के ही न्यूज़ चैनल चलते हैं जिनमें वो खबरें सुनते हैं शाम के 9 बजे या 6 बजे।
2: बिल्कुल ऐसा ही है, इवन दो उर्दू तो वैसे ही खूबसूरत ज़ुबान है, लेकिन अगर आप बात करें पंजाबी, पंजाबी इतनी मीठी ज़ुबान है, पंजाबी मुझे सिख जो फिल्म्स में पंजाबी बोलते हैं मुझे वो बहुत पसंद है और वो बड़ी मीठी जुबान है।
1: बिल्कुल ऐसे ही है।
2: तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जुबान को जुबान रहने दें, आप उसको स्टेटस सिंबल ना बनाएं और अपने बच्चों के साथ जुल्म ना करें।
1: बिल्कुल ऐसे ही आपने बात की थी कि हमारा राइटर जो है उस पे है कि उसने कैसे एक ड्रामा अच्छा लिखना है, तो बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर उसको लफ्जों को तराशना आएगा और वो हमारा कल्चर कागज पे खूबसूरत अंदाज से तराशेगा, और हमारे जो यंग तो नहीं कहेंगे लेकिन जो छोटी अभी है जिन्होंने आगे बढ़ना है वो देख के ही कुछ सीखेगी।
2: बिल्कुल।
1: इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि आप जब इस तरह के इवेंट्स वगैरह कवर करती हैं तो आपका जो बुक स्टॉल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा लगे होते हैं, तो आपका उनके बारे में या कभी उनसे अगर आपकी बातचीत हुई हो तो उनकी क्या राय होती है, क्या कहीं हमारी जो इस जनरेशन में कहीं लैक आ रहा है बुक्स पढ़ने का? एक तो हमारा स्क्रीन टाइम है, हमारा सोशल मीडिया आ गया, बहुत ज़्यादा लोग ई बुक्स पढ़ लेते हैं, लेकिन एक वजह शायद ये नहीं है कि बुक्स बहुत ज़्यादा महंगी हैं, तो कहीं ना कहीं ये वजह तो नहीं आ रही कि बुक्स की ख़रीदारी कम हो रही है? या कभी आपकी ऐसे बातचीत हुई हो तो उनकी क्या राय है इस बारे में?
2: अच्छा, ऐसा है कि बुक्स की, इसमें कोई शक नहीं है कि बुक्स की भी जो कीमत है, जो प्राइस है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है।
1: सॉरी, लेकिन कुछ ना पब्लिकेशंस पे इतने पैसे लगा देते हैं, अच्छा कागज़ यूज़ कर लेते हैं कि जो बुक 500 में मिल जाती थी वो अब 1500, 2000, 3000 पे में मिलती है।
2: वो फिर अब यही बात है कि आप जिस चीज़ को भी बिजनेस की तरफ ले जाते हैं तो फिर अगर आपका माइंडसेट बिजनेस करने का है तो फिर लोग कम उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, ये तो फिर माइंडसेट की बात आ जाती है। बट स्टिल ऑन द अदर हैंड, जो लोग बुक्स पढ़ने के शौकीन हैं, आप उनके घर में, उनके ड्राइंग रूम में, उनके बेडरूम में पूरी कबर्ड जो हैं वो भरी हुई है, वो मेकअप कम खरीद लेंगी खवातीन,
1: हाँ जी,
2: लेकिन वो अपनी बुक लेंगी, तो मतलब ये भी प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग जब भी किसी चीज़ को बिजनेस बना देते हैं तो वो आम आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है ना चीज़ें, तो कोई शक नहीं है। लेकिन हाँ, साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि ठीक है, किसी ने ख़रीद लिया, लेकिन जिसको वाकई शौक है वो शेयर भी कर सकता है, और बहुत से तरीके, और अब तो जैसे आपने कहा ना कि ई बुक्स भी आ गई हैं, तो भाई ई बुक्स की भी अब सब्सक्रिप्शंस लेनी पड़ती हैं। वो भी अब आप कह लें ऐसे नहीं रहा कि फ्री में आपको मिल जाए। तो बस इसी तरह से मिक्स एंड मैच ही सूरत हाल है, लिटरेचर पढ़ने वाले लोग कम रह गए हैं।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन जो लोग हैं वो बड़े क्वालिटी पीपल हैं। तो
1: अच्छा, हम ब्रेक पे जाने से पहले एक बात जो मैं सोच रही थी, मैंने बहुत से चीज़ें देखी, अगर आपके कोई शोज हों, कोई अवार्ड शोज हों या फिर कोई और ऐसा इवेंट हो ना, तो उसकी स्पेसिफिक कवरेज हो रही होती है लाइव। लेकिन हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मैंने कभी बुक्स इवेंट की लाइव कवरेज नहीं देखी। हम इस पे आके दोबारा बात करते हैं। अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी म्यूजिकल ब्रेक का, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: सुरौर ताल ड्रामों के गर्म लहजे और तकरार सियासत से दूर लेकिन मस्ती के पास सिर्फ FM 92.6 UCP की दुनिया।
1: वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। प्रोग्राम नखले अदब में मैं आपको दोबारा खुश आमदीद कहती हूँ। हमारे साथ मौजूद है सामिया। हमने लिटरेचर पे बात की, हमने बुक फेयर्स पे बात की। सामिया, आपने सबसे पहले शुरू में बताया कि आपने CSS के अटेम्प्ट भी दिए, PMS के अटेम्प्ट भी दिए, तो मुझे मालूम है उसके लिए कितना किताबों से आशना होना ज़रूरी होता है। उसमें हर किस्म की किताब आ जाती है, करंट अफेयर्स हो गए, लिटरेचर हो गया, फिलोसफी हो गई, हर किस्म का। और आपने बताया कि आपका कायद आज़म लाइब्रेरी ने बहुत आपका रास्ता हमवार किया उसके लिए, तो आप मुझे सबसे पहले तो थोड़ा सा उस जर्नी के बारे में बताएं और बुक्स के बारे में कि कौन सी बुक्स आप प्रेफर करेंगी हमारे सामईन को, कि अगर उन्होंने CSS के अटेम्प्ट देनी हो तो कितना ज़रूरी है उनके लिए लिटरेचर से या किताबों से करीब होना।
2: ठीक है, सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं कायद आज़म लाइब्रेरी से। अच्छा, सबसे पहले लाइब्रेरी इज़ अ ब्लेसिंग। अगर आपको ख़ुद से तैयारी करनी है या आपको 5 से 6 महीने किसी भी चीज़ पर फोकस्ड होकर तैयारी करनी है। दूसरी बात करते हैं उस पर CSS की तैयारी पर, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। आप इतने फेडअप हो जाते हो इतना पढ़ के, क्योंकि 12 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट आपको इस तरह से कवर करने हैं कि आप कम्पीट कर सकें। तो ऑब्वियसली किसी इंसान का मैथ अच्छा होगा, किसी का साइंस अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी। ज़रूरी नहीं है सबके ये 12 के 12 सब्जेक्ट्स जो हैं वो अच्छे हों। कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें कुछ सब्जेक्ट्स में तो आपका इंटरेस्ट होगा, कुछ में नहीं होगा। आप बहुत फेडअप हो जाएंगे कि मैं यार क्या तैयारी कर रहा हूँ, मैं इतना पढ़ रहा हूँ, मतलब कुछ नज़र भी नहीं आ रहा कि पता नहीं होगा क्लियर नहीं होगा। तो देर आर मिलियंस ऑफ थॉट्स, ठीक है, उनको पहले आपको ओवरकम करना आना चाहिए। दूसरी बात, लाइब्रेरी जाने का ना सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि वहाँ पर ना बहुत सारे सीरियस कैंडिडेट्स आए होते हैं। जब आप उनको देखते हैं ना, तो फिर जो आप डीमोटिवेट हो रहे होते हैं और आपने जो ईजी लिया होता है बाजुकात, आप ईजी ले लेते हैं कि अच्छा ये तो हो गया, फिर आप वो ईजी नहीं लेते, फिर आप भी फोकस्ड, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका कंपटीशन जो है वो इन लोगों से है जो आपसे बेहतर पढ़ रहे हैं, या जो आपके नेक्स्ट आपके टेबल पे है वो बंदा देखो कितनी तैयारी कर रहा है, वो नोट्स भी बना रहा है, वो ये भी रेफरेंस भी यूज़ कर रहा है वो। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है, फिर प्लस आपको एक वो जो माहौल चाहिए होता है पढ़ने वाला, जिसमें वाइब्स आए, हर बंदा पढ़ रहा हो, कोई और बात ना करो जिसकी वजह से आप डिट्रैक हो जाएं, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बुक्स में। अच्छा, CSS की अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो इसमें तो जितना नॉलेज हो उतना कम है, ठीक है, आपका नॉलेज ज़ाया नहीं होता CSS में। आप वो ऐसे में लिखोगे नहीं तो आप करंट अफेयर से कोई रेफरेंस देके आप हिस्ट्री से जोड़ोगे, उसमें आपका नॉलेज कभी भी ज़ाया नहीं होगा। और उसमें ये भी नहीं है कि अगर जो आपने पॉलिटिकल साइंस के लिए पढ़ा है वो सिर्फ आप पॉलिटिकल साइंस में ही अप्लाई कर सकते हो, वो आप अपने ऐसे में भी अप्लाई कर सकते हैं, वो आप पाकिस्तान हिस्ट्री से अगर कुछ आ जाए पॉलिटिक्स से आप उसमें भी अप्लाई करें। सो दीज आर वेरी ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उसके लिए अब हम लिटरेचर पे आते हैं। सबसे पहले तो ये बात समझ लें कि अब जो CSS है इट्स ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, बट स्टिल इट इज़ ऑल अबाउट बैकग्राउंड नॉलेज ऑल्सो,
1: ठीक है।
2: आप कोई भी पेपर अटेम्प्ट नहीं कर सकते जब तक आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज ना हो उस चीज़ की। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटी सी एग्जाम्पल लेते हैं, हम पॉलिटिकल साइंस में हम फिलोसफीज़ बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, एरिस्टोटल की पढ़ते हैं, हम मॉन्टेस्क्यू की पढ़ते हैं, रूसो की पढ़ते हैं और प्लाटो की पढ़ते हैं, इस तरह से। अब ये फिलोसफीज़ की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो महदूद नहीं है, वो आपके किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी वक्त काम आएगी,
1: ठीक है।
2: ठीक है, दूसरी बात, अगर आप एक और एग्जाम्पल ले लें, कॉन्स्टिट्यूशन की ले लें, पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आपको पता है हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, तो हमें बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट अमेंडमेंट क्यों हुई, सेकंड अमेंडमेंट क्यों हुई, आपको हिस्ट्री तक आने के लिए बैकग्राउंड नॉलेज। और जब आपके पास बैकग्राउंड नॉलेज होगा तो आप करंट अफेयर पे भी बात कर सकेंगे ना, कि इस वक्त जो चल रहा है वो उस वक्त क्या हुआ था जो इस वक्त ऐसा चल रहा है, या अब हमें क्या चीज़ चेंज करनी है जो फ्यूचर। सो बैकग्राउंड नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, और वो आपको जो क्रेडिबल नॉलेज है वो बुक से ही मिलती है। अभी भी इस इंटरनेट के दौर में भी नो डाउट बहुत अच्छे यूट्यूब्स पे भी लेक्चर होते हैं, नो डाउट, बट वो भी रेफरेंस ही देते हैं कि इस बुक से, इस बुक से। सो बुक पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट की एक बुक ऐसी हो जो सिलेबस कवर करे, और एक बुक ऐसी हो जो किसी फॉरेन राइटर ने लिखी हो, ताकि आप दोनों डोमेन्स में जा सकें, आप किसी भी तरह से क्वेश्चन को आंसर कर सकें, आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हो, आपकी नॉलेज बिल्डिंग हो।
3: अच्छा, ये तो हो गई करिकुलम की बुक्स ना, एक्स्ट्रा करिकुलम की जो बुक्स होती हैं, जैसे नॉवेल्स वगैरह हो गए या फिर अफसाने या कुछ भी, क्या ये हेल्प करता है सीएसएस के लिए या ऐसे?
2: अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपको अगर एक ही लाइन में इसका जवाब दूं, सीएसएस की तैयारी करने में क्या चीज पढ़नी इम्पोर्टेंट है, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये होता है कि क्या चीज नहीं पढ़नी।
3: ओके,
2: क्योंकि आपका टाइम बहुत ज्यादा कीमती होता है जब आप सीएसएस की तैयारी कर रहे होते हो, तो आपको बड़े सेंसिबल तरीके से आप 5 साल के पास पेपर्स निकाल लें।

0: रखे इलेक्ट की है 200 मार्क्स की या 100 मार्क्स की, सो व्हाई नॉट, लेकिन वैसे नहीं आपको जाना।
1: और आपने जो अपनी ये सारी तैयारी है ये खुद की है ना, लाइक आपने किसी एकेडमी से नहीं की?
0: हाँ जी, मैं लाइब्रेरी जाती थी, मैं 6 महीने लाइब्रेरी कंटिन्यूसली बगैर किसी एक दिन के ऑफ के 8 से 9 घंटे के लिए जो है मैं जाती थी लाइब्रेरी। उसके बाद जो मेरे लास्ट डेज शुरू हुए, पेपर्स करीब थे, तो फिर मैं इवेल्यूएशन करा लेती थी एसेज की, मतलब मैं खुद लिखती थी, मुझे टॉपिक आ जाता था, पेपर आ जाता था, वो मैं लिखती थी और फिर मैं वो चेक एक दफ़ा ज़रूर करवा लेती थी ताकि मैं अपना मुहासबा अकाउंटेबिलिटी कर सकूँ।
1: बाकी जो आपने लाइब्रेरी की बात की थी, शायद मुझे लगता है कि वहाँ पे चूंकि वो लोग आए हैं जिन्होंने वाकई ही कुछ करना है, नॉन सीरियस नहीं है, शुगल मेले के लिए नहीं आए।
0: लेकिन तो चले आपको एक थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बात भी बताती हूँ, थोड़ा सा लाइटर मूड में भी चली जाएगी। वो बात ये है कि हम, अगर मैं स्पेसिफिकली जिना लाइब्रेरी की बात करूँ ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बलोची, सिंधी और इस तरह से लोग आए होते हैं पंजाब के अलावा, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर वो लोग आए होते हैं जो लोग हॉस्टल्स में रहते हैं, और वो स्पेशल लाहौर के हॉस्टल्स में आए होते हैं सीएसएस की तैयारी करने के लिए, और फिर ऑब्वियसली वो लाइब्रेरी आते हैं। अब ना मैं ना गुजरती थी ना, तो मैं कहती थी यार मैं तो 2 घंटे बाद ही चाय पीने चलो चलें, और ये क्रेविंग्स होती हैं पढ़ते हुए भी दिमाग आपका। मैंने कहा यार ये बंदा है, ये देखो 4 घंटे से ये ऐसे ही है और पढ़ रहा है, बस पढ़ रहा है। काफ़ी अर्सा मैं ये देखती रही और मैं ताज्जुब करती रही कि अच्छा यार बलूचिस्तान और सिंध के लोग इतने मेहनती और ऐसे वो पढ़ते हैं और आए हैं, बड़ी बात है यार, बड़ा टफ कॉम्पिटिशन है, अच्छा है, मतलब CSS तो बड़ा टफ है यार, ये लोग इतना पढ़ते हैं, मैं तो नहीं पढ़, मेरा मैं पढ़ ही नहीं पा रही इतना। तो फिर मैंने एक दफ़ा जब बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया ना, मैं उनके साथ वाले टेबल पर बैठी, मैं कहता इंस्पायर हूँ मैं भी थोड़ा, कि मुझ पर प्रेशर आया कि मैंने पढ़ना है, तो फिर मुझे ये पता चला। खैर ये एक अनफॉर्चुनेट सी भी बात है, बदकिस्मती की भी बात है, कि वो ये है कि वहाँ पे बलूचिस्तान, सिंध में और ऐसी जगहों पे लिटरेसी रेट की क्वालिटी इतनी ज़ीरो है कि जो पेज हम लोग 5 से 10 मिनट में पढ़ लेते हैं ना अनफॉर्चुनेटली, उनको वही पेज पढ़ने में 30 से 35 मिनट लगते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखी कि वो लोग मेहनती बहुत हैं, वो मेहनत उन्हें ज़्यादा करनी पड़ती है, और वही मैं बात करूँगी दोबारा कि लिटरेचर बहुत, लिटरेसी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लिटरेसी जो है वो इक्वल होनी चाहिए चारों सूबों में। हम देखते हैं लाहौर के लोग तो बहुत अच्छा, पंजाब के लोग बहुत अच्छा, बहुत स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे हैं। तो एक तो हमें थैंकफुल होना चाहिए जो लोग लाहौर और पंजाब में रहते हैं, हम लोग बहुत डेवलप्ड हैं, इवन दो पाकिस्तान में जो है ना बहुत आपको डिस्क्रिमिनेशन अनफॉर्चुनेटली मिलेगी। तो ऐसे ही है कि पंजाब के लोग जो हैं थोड़ा सा उनको शुरू से ही सहूलियात मिली होती हैं तो बेहतर कर लिया।
1: इसके अलावा मैं अगर, अब चूंकि हम अपने अख्तितामी मराहिल की तरफ जा रहे हैं, तो इन द एंड अगर आप कोई सजेशन देना चाहें हमारे सामईन को या लिटरेचर के हवाले से कुछ कहना चाहें तो प्लीज़।
0: हाँ जी, देखें लिटरेचर जो है आपकी ज़िंदगी में खूबसूरती पैदा कर देती है। आप जब लिटरेचर पढ़ते हैं, आप उससे मुंसलिक होते हैं, तो आप अपने गम भूल जाते हैं, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत ज़ुबान में लिखी होती है या इतनी वो इन्फॉर्मेटिव होती है, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल एनालिसिस। और ये नहीं कि आपको कोई पेपर पास करना है तो आप ये सब पढ़ें, आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी आपको ख़ुद भी नहीं पता चलेगा लिटरेचर जो है आपके अंदाज़ गुफ्तगू में कितना मुस्बत जो है किरदार अदा करेगी, आपके लाइफस्टाइल पे कितना किरदार अदा करेगी, और आपकी अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो है लिटरेचर जो है खासा किरदार अदा करेगी। तो बिल्कुल ऐसा ही है, लिटरेचर से मुंसलिक होना आपके अपने ऊपर ही मेहरबानी होती है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सामिया, आपने हमें वक्त दिया, और चूंकि हमारे शो की रिवायत है कि हम अपने शो का इख्तिताम कुछ अशआर से करते हैं, तो आज फैज़ अहमद फैज़ के कुछ अशआर हैं। दोनों जहां तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शब गम गुजार के, वीरा है मैं कदा खम व सागर उदास हैं, तुम क्या गए के रूठ गए दिन बहार के। उम्मीद करती हूँ आप सबको शो पसंद आया होगा, आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं फेसबुक पेज पर, इंस्टा पेज पे UCP रेडियो FM 92.6 के। अपनी मेज़बान थे ज़ीन अली को इजाज़त दीजिए, मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में किसी नए गेस्ट के साथ। खुदा हाफिज़।

0: एक नया अंदाज,
1: एक नई सोच,
0: एक नई पहचान,
1: एक नई लगन।
0: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
1: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
0: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
1: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में UCP No. 1।
0: जब मिलती है लगन,
1: मेहनत,
0: कामयाबी और खुलूस,
1: तो बनती है
0: UCP की दुनिया।
1: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
0: सुनते रहिए।
2: Broadcasting University Studios, where knowledge is empowerment.
3: This is 92.6.

when you are off. Turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

दो पत्ते पतझड़ के पेड़ों से उतरे थे, फिर उगने की चाहत में उस सहराओं से गुजरे। जब दरख्त हमारे लिए इतना कुछ करते हैं तो क्यों ना हम उनकी खातिर एक कदम उठाएं। जरा सोचिए कि जंगलात हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जंगलात दर्जा हरारत में कमी लाते हैं, ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जज्ब करते हैं, माहौल को ठंडा और खुशगवार करते हैं, परिंदों के लिए ठिकाना है, सैलाब में रुकावट बनते हैं। ये हकीकत है कि जंगलात इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज्व हैं। इसलिए अपने हिस्से का पौधा लगाइए ताकि आने वाली नस्ल तक वो एक तनावर दरख्त बनकर खड़ा हो। अ पब्लिक सर्विस मैसेज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब।

0: And now, you are gonna listen an exclusive documentary on 92.6 FM UCP ki duniya.
1: भूख चेहरे पे लिए चांद से प्यारे बच्चे बेचते फिरते हैं गलियों में गुब्बारे बच्चे हो गया चर्ख सितमगर का कलेजा ठंडा मर गए प्यास से दरिया के किनारे बच्चे बच्चे उम्मीद की किरण और जिंदगी की नवीद होते हैं इनके हंसते मुस्कुराते चेहरे और जगमगाती आंखों से ख्वाब नजर आते हैं इनकी हंसने की झनकार हमारे चेहरों पर मुस्कान और घरों में रौनक बिखेर देती है इनकी नन्ही नन्ही शरारतें आपके अंदर जीने की उमंग पैदा करती हैं इन्हीं की वजह से आपके घर में रौनक और जीने का हुस्न नजर आता है ये नन्हे तारे बाज औकात आपके लिए मशले राह और जिंदगी गुजारने का मकसद बन जाते हैं बच्चे तो रयाकारी से पाक होते हैं लेकिन बाज औकात हालात रहन सहन और तर्ज जिंदगी इनको अपने अपने रंग में रंगती चली जाती है
2: हम सुबह सुबह घर से आ जाते हैं तो इधर आके हम शहर पे काम करते हैं हमारे घर का किराया नहीं पूरा होता इसलिए किराया कैम किराया दे नहीं सकते इसका किराया भी 5,000 रुपये हम चलो काम करते हैं हमारी अम्मी कहती है 1,000 रुपये चले जाओ इधर काम कर लो अब मजदूर है वो भी नहीं कर सकते इसलिए हम कुछ करके हम साथ में मिल के जो होता है हम करके आमदनी चला लेते हैं जो हम काम कर देते हैं ऊपर से पकड़ने वाले आए थे जो पैसे होते हैं वो ले जाते हैं और हम जो सारे दिन की मेहनत होती है उन पर पानी पेट जाते हैं जो भी होते हैं हम फिर भी छोड़ देते हैं हम कहते हैं अल्लाह का नाम है छोड़ दो हमें कोई जब गाड़ी साफ कर रहे होते हैं तो कोई 10 रुपये कोई 20 देते कोई देता नहीं जो अच्छे लोग होते हैं वो दे जाते कोई देते नहीं इसलिए हम अल्लाह का शुक्र है कभी कल का सरकट चल जाता है
1: और इसी तरह ये बच्चे नन्हे पौधे से तनावर दरख्त बनने के अमल से गुजरने लगते हैं जिंदगी की कश्मकश इन्हें फाइटर बना देती है दर दर की ठोकरें इनका मुकद्दर बन जाती हैं जिंदगी वक्त हालात और मजबूरियां कब इनके नन्हे नन्हे हाथों में खिलौनों की जगह अपने खानदान की जिम्मेदारियों का बोझ थमा देती हैं इन्हें पता ही नहीं चलता जिंदगी से लड़ते लड़ते ये बच्चे जिंदगी का कितना बड़ा सबक सीख जाते हैं ये इनके सिवा कोई नहीं बता सकता
3: मेरे अब्बू फोत हो गया मैं अकेला ही घर का खर्चा पानी चलाता हूँ और मैं 10 रुपये मैं गुब्बारे पे 1 कड़ा अपना खर्चा चलाता हूँ और मैं पीछे से 5 रुपये का गुब्बारा लाता हूँ और आगे आके मैं 10 रुपये का गुब्बारा बेच देता हूँ इस तरह मुझे रोज के 40-50 गुब्बारे मेरे बिक जाते हैं जिसमें फिर मुझे 250 रुपये मुनाफा हो जाता है और मैं ला के अपनी अम्मी को दे देता हूँ मेरी अम्मी भी लोगों के घर में काम करती हैं इस तरह हम दोनों माँ बेटे कमाई करते हैं और हमारे घर का खर्चा पानी चल जाता है
1: ये वो बच्चे हैं जो वक्त से पहले ही वक्त और हालात का हर रंग और मौसम देख लेते हैं हालात की नामसादत इन पर जिम्मेदारियों का वो बोझ डाल देती है जिसके लिए वो ज़हनी, जिस्मानी और फितरी तौर पर तैयार भी नहीं होते लेकिन खानदान चलाने वाले गुर्बत के थपेड़े इनके हाथों में खिलौनों के बजाय मेहनत मजदूरी के आलात थमा देते हैं और इन्हें अपने वालदैन का हाथ बटाने के लिए जालिम बेहिस और बेरहम माशरे के दलदल में हाथ पांव मारकर अपने और अपने खानदान के बका का सामान करना होता है
4: मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तब मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया तो उनकी टांग टूट गई अब वो मेरे पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा सकते थे मैं इस दुकान पे आया तो उस्ताद जी से मैंने कहा कि मैंने आपके पास काम करना है तो मुझे पढ़ाई का शौक था तो उस्ताद जी ने मेरे से वादा किया कि वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे तो मैं इधर काम करना शुरू कर दिया अब छुट्टियाँ हुई हैं मैं बड़ी मेहनत से काम करता हूँ सुबह पहले शाम को सिर्फ स्कूल पढ़ने के बाद आता था अब मैं सुबह भी आ जाता हूँ और दिन सही मेहनत से काम करता हूँ आधे से ज़्यादा काम मैंने सीख लिया उस्ताद जी कहते हैं कि अब मैं जल्दी मैकेनिक बन जाऊँ
1: होना तो ये चाहिए कि माशरे ऐसे बच्चों के साथ हुस्न सलूक करे इनसे इनकी इस्तेतात और जिस्मानी ताकतों के मुताबिक काम ले मगर इनकी मजबूरियों का फायदा उठाते हुए इन्हें काम के बोझ तले ऐसा दबा दिया जाता है कि वो 12-16 घंटे तक मुसलसल मुशक्कत करते हैं। पूरा काम लेने के बावजूद कलील मुआवजा दिया जाता है। सितम जरीफी ये है कि इन्हें इज्जत देना तो दरकिनार इनके साथ हकारत आमेज सलूक किया जाता है। इनके नाम की सूरत में इनके वालिदैन ने इन्हें जो शनाख्त दी होती है वो भी इनसे छीन ली जाती है। इन्हें इंतहाई हकारत से पुकारा जाता है। ओए छोटे, एक ऐसा ही लफ्ज है जो इनकी शख्सियत का हिस्सा बनकर रह गया है। इन्हें इस नाम के अलावा किसी और नाम से पुकारा भी नहीं जाता। इस नाम में इज्जत से कई ज्यादा तहकीर का पहलू पोशीदा है। क्या आपने कभी सोचा है जिन्हें आप ओए छोटे कहकर पुकारते हैं, क्या ये मुनासिब है? क्या आप कभी चाहेंगे कि आपके बच्चे को, जिसका नाम आपने इसकी पैदाइश के वक्त बड़े दुलार और प्यार से रखा था, उसे कोई धुतकारते हुए अल्फाज से पुकारे? नहीं ना, तो एक पल सोचिएगा जरूर कि इन बच्चों पर क्या गुजरती होगी। ये छोटे मेरे और आपके आसपास हर वक्त हर जगह मिल जाते हैं। कचरे की बोरियां उठाए, पॉलिश का सामान लिए, फ्रूट बेचते, सड़कों पर टोकरियां लिए, बाजारों में शॉपर उठाते, मोटर मैकेनिक्स के पास, पंक्चर लगाने वाले के पास, इन बच्चों ने एक पूरे खानदान को अपने कमजोर जिस्म, पुर अज़्म, हिम्मत और हौसले के पीछे पनाह दी होती है। ऐ छोटे की सदा लगाने से पहले बस एक लम्हा, एक लहज ये जहन में याद कर लें कि ये किसी घर के वाहिद बड़े हैं और बड़ों का एहतराम हमें सिखाया गया है। नाबालिग बच्चों का रोजी के हसूल के लिए काम करना चाइल्ड लेबर कहलाता है। बच्चों के काम करने की जो सबसे बड़ी वजह देखने में आई है वो गुर्बत है। महंगाई और बेरोजगारी के इस दौर में इन मजदूरी करने वाले बच्चों के वालिदैन के पास इतने वसाइल नहीं होते कि वो अपने बच्चों को बाआसानी तालीम दिला सकें। बच्चों से इनकी बचपन की खुशियां छीन कर इनसे मशक्कत वाला काम लेना इनकी जात के लिए जहनी, जिस्मानी, समाजी और इखलाकी तौर पर इंतहाई खतरनाक और नुकसानदेह है। क्योंकि जिस उम्र में बच्चों के हाथों में किताबें और खिलौने होने चाहिए, इस उम्र में इन मासूम हाथों में भारी औजार और होटल के बर्तन थमा दिए जाते हैं।
5: मेरे पापा फौत हो गए हैं, मेरी मामा ने दूसरी शादी कर ली है और मैं होटल में काम करता हूँ, जिसकी वजह से मुझे शाम को 300 रुपया मिल जाता है। उनमें से मैं अपनी छोटी बहनों के लिए खाने की चीज़ें और दूध वगैरह लेके जाता हूँ, जिसे खाकर वो खुश होती हैं और मुझे भी खुशी महसूस होती है।
1: इन्हीं के बारे में किसी ने कहा है, अफलास की बस्ती में जाके देखो, वहाँ बच्चे तो होते हैं मगर बचपन नहीं होता। अफराते जर भी बच्चों को मजदूरी करने तक लाने की एक अहम वजह है, क्योंकि महंगाई के इस दौर में बच्चों के या घरेलू अखराजात पूरे नहीं होते तो मजबूरन वालिदैन को बच्चों को काम करने पर भेजना पड़ता है। चाइल्ड लेबर के खिलाफ आलमी दिन हर साल 12 जून को पाकिस्तान समेत दुनिया भर के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है, जिसका मकसद बच्चों को काम करने से रोकना है। कानून बनाने वाले महलों में बैठकर कानून वजा करते हुए इस बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि असल मसला चाइल्ड लेबर का नहीं बल्कि मुल्क में माशी सूरतेहाल का है, जिसमें करप्शन, रिश्वत और दिन ब दिन बढ़ते हुए टैक्सेस एक अहम मसला है।
6: वहाँ 1,30,00,000 अफराद खत्ते अफलास से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर इफलास की सूरत हाल है कि लोगों को खाने पीने की चीजें मुयसर नहीं है, तो उसमें फिर हमारा शुमार कतार कहाँ, अगर हमारा मुल्क तो वैसे ही कर्जों पे चलने वाला।
1: कौन सी ममता है जो अपने जिगर के टुकड़े को मजदूरी करने वाले औजार थमाए, मगर पेट की भूख और माशरे का तल्ख रवैया इंसान को इस नहज पर ला खड़ा कर देता है कि वो ये सब करने पर मजबूर हो जाता है। एक इंसान होने के नाते हम इस बात के कैसे हामी हो सकते हैं कि फूल से मासूम बच्चों के हाथ काम करते हुए आबलों से भर जाएं? मगर किसी गरीब का गंदगी के ढेर से निवाला तलाश करना भी हमारे लिए एक लम्हा फिक्रिया है।
7: आप सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।

0: University Studios, where knowledge is empowerment. This is
1: 92.6.
2: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 यूसीबी की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। हमारे साथ मौजूद हैं मिस राबिया महमूद, इनसे मजीद सवालात करते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर में हम और क्या क्या कर सकते हैं। मिस, ब्रेक में जाने से पहले आप बात कर रही थी कि हम फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हम करें बात प्रिसीजन एग्रीकल्चर की, तो इसके इस्तेमाल से हम किस तरह फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं?
3: जी मिस, देखें, जैसे एग्रीकल्चर जो है वो हमारे पास डिफरेंट स्टेप्स पे डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल, पहला स्टेप है हमारे पास लैंड को हमने तैयार करना है फॉर सोइंग पर्पस। जब हम सोइंग करते हैं सीड्स की, तो कुछ फर्टिलाइजर्स जो हैं हमारे पास अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ क्रॉप, और इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द टेक्सचर ऑफ द सॉइल और सॉइल की टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल, अगर हम राइस क्रॉप की बात करें तो वाटर स्टैंडिंग क्रॉप है। लाइक एट द स्टार्ट ऑफ द सीजन, जब आपने अपनी सॉइल को तैयार करना है, तो आपने उसके अंदर जो फर्टिलाइजर है या टाइप ऑफ फर्टिलाइजर है, राइस के लिए कौन से फर्टिलाइजर जरूरी हैं, जैसे पोटाश है और मैग्नीशियम है, हम स्टार्ट में सॉइल की प्रेपरेशन में तब ही फर्टिलाइजर्स को जो है वो इंड्यूस कर देंगे
2: जी।
3: इसके अलावा, और हमने वाटर को उस टाइम पे वाटरिंग कर देनी है, फर्स्ट वाटरिंग। या अगर हमें फॉर एग्जांपल अब इस सीजन में, जैसे राइस का सीजन है, तो रेनफॉल्स कैन हैपन, ठीक है, तो हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो वाटर है, जो फार्मर अपने रिसोर्स से उसको वाटरिंग कर रहा है, वो कितने अमाउंट में कर रहा है या क्वांटिटी में कर रहा है, और रेनफॉल के थ्रू जो क्रॉप है वो कितना वाटर गेन कर सकती है।
2: यानी ऐसा हो सकता है कि अगर पानी की क्वांटिटी ज्यादा हो जाए तो वो जो हमारी क्रॉप है वो खराब हो सकती है।
3: यही बता रही हूँ ना कि फार्मर को अपने डेज के हिसाब से, या क्रॉप साइकिल जिस मंथ से शुरू हुआ है, उसको एस्टीमेशन, उसको ऐसे रिसोर्सेज या ऐसी नॉलेज प्रोवाइड होनी चाहिए कि उसको पता लग जाए कि अभी जो रेनफॉल सीजन शुरू हो रहा है या मूनसून सीजन शुरू हो रहा है, तो मैंने वाटरिंग कितनी करनी है। लाइक राइस को स्टार्ट ऑफ द साइकिल से बिफोर हार्वेस्ट तक हम उसको पानी की जरूरत होती है। लाइक कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं जिसको वन टाइम, लाइक अगर आपने सोइंग कर लिया, जैसे वीट है, तो आफ्टर 10-20 डेज आप उसकी वाटरिंग करेंगे, ठीक है, उसके बाद वो क्रॉप ग्रो करती जाएगी। तो फिर फर्टिलाइजर्स हमने कब देने हैं, कुछ क्रॉप्स के स्टार्ट पे आते हैं, कुछ क्रॉप्स के एंड पे आते हैं, तो राइट यूज, राइट टाइम एंड राइट अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर्स, या कौन से फर्टिलाइजर्स कौन सी क्रॉप को सूट्स करते हैं, या अब फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पाकिस्तान में डिफरेंट ब्रांड्स हैं फर्टिलाइजर्स के, भी ब्रांड है जैसे यूरिया है, तो कौन से फर्टिलाइजर में किस न्यूट्रिएंट की अमाउंट ज्यादा है, या मेरी क्रॉप को वो अमाउंट कैसे चाहिए, उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और प्रिसीजन एग्रीकल्चर इसमें कैसे किरदार अदा कर सकती है, मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। जैसे सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान का, उन्होंने 2022 में एक इनिशिएटिव लिया, उन्होंने मोबाइल एप्लीकेशन डेवलप की खाद हिसाब के नाम से, और उन्होंने इसको अवेयर कैसे किया फार्मर से, दे कंडक्टेड अ हॉर्टिकल्चर एक्सपो इन एक्सपो सेंटर, वहां से पंजाब भर के लाइक मेजर जो है फार्मर कम्युनिटी है, वहां पे उनको बुलाया गया, उनको अवेयरनेस दी गई, और वहां पे उस मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च हुआ। तो किस तरह टेक्नोलॉजी ने उनकी हेल्प की कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास मोबाइल है तो आप उसको इंस्टॉल करें उस ऐप को, अपनी उसके अंदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन रजिस्टर के बाद वो आपसे आपकी लैंड, आपकी क्रॉप टाइप इनपुट मांगेगा, ठीक है, और उसके अंदर जो है वो आप सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, देन वो आपको बताएगा कि आपकी लैंड का एरिया के अकॉर्डिंग और क्रॉप की टाइप के अकॉर्डिंग आप ये फर्टिलाइजर इतने रेशो में दें, अपनी फसल को दें, वो रेशो बता देता है या अमाउंट इन केजेस बता देता है, लाइक इतने एकड़ में इतने एजेस। ट्रेडिशनल वे में क्या होता था कि वन साइज फिट्स ऑल, ठीक है, फार्मर ने अपने पास एक्सपीरियंसेस से जो लर्निंग की होगी कि मैंने अपनी इतनी लैंड में इतना फर्टिलाइजर देना, ही डजंट नो के इन्वायरमेंट पैरामीटर्स क्या हैं, क्लाइमेट चेंज हुआ है या नहीं हुआ, मेरी लैंड पे पहले सैलाब आया था या नहीं आया था, या मेरा सॉइल मॉइस्चर इंक्रीज तो नहीं हो गया, एवेपो ट्रांसपायरेशन का कोई मसला तो नहीं है, तो उसके अकॉर्डिंग उसने फर्टिलाइजर की वही अमाउंट ऐड करनी है। बट एट द स्पॉट, एट द राइट टाइम उसको क्या करना चाहिए, पहले उसको अपनी लैंड की सूटेबिलिटी चेक करनी चाहिए, अपने जो सॉइल का है उसको टेस्ट करवाना चाहिए, ठीक है, वो किस टाइप के सॉइल में जो है वो क्रॉप ग्रो कर रहा है, और फिर राइट यूज ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे मैंने आपको प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हवाले से एग्जाम्पल दी, लाइक वो खाद हिसाब एप्लीकेशन, तो इट कम्स अंडर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी।
2: जी मिस, अभी आप राइस क्रॉप की बात कर रही थी कि उसमें पानी का ज्यादा इस्तेमाल जो सा है वो हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर से किस तरह वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं?
3: जी मिस, वाटर मैनेजमेंट एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है आफ्टर सॉइल. जब हमने जो अपने सीड्स हैं या जो भी क्रॉप है हम उसको उगा रहे हैं फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आती है लाइक वाटर अवेलेबिलिटी. अगर हम बात करें लाइक एरियाज की जिसमें वाटर अवेलेबिलिटी है, तो उधर फिर आ जाता है राइट यूज़ ऑफ वाटर या राइट अमाउंट ऑफ वाटर, कितनी हमें वाटरिंग करनी चाहिए या कितने टाइम इंटरवल्स के बाद करनी चाहिए. और दूसरी चीज़ है, एक इनिशिएटिव लिया था हॉक आई पाकिस्तान, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका के मोटिव था, काइंड ऑफ स्टार्टअप था, कि एक फार्मर्स को वो नॉलेज भी दे रहे थे और एक तरह से अपनी एडवर्टीजमेंट भी कर रहे थे या अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रहे थे. उनका मोटिव ये था कि वो सेंसर्स लगा देंगे लाइक ट्यूबवेल मोटर्स के साथ. लाइक होता ये यूजली के लाइक अगर फार्मर्स जो हैं वो मोटर्स ऑन करके भूल जाते हैं लाइक कितने टाइम पीरियड के लिए उनकी लैंड को वाटरिंग चाहिए, तो उसके लिए क्या होता था कि एक्सेस वाटर हो जाता था और जो हमारे पास जो सॉइल है वो मोर देन रिक्वायर्ड सॉफ्ट हो जाती थी, जो कि बहुत सारे सिनेरियो में ठीक नहीं है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. लाइक आपकी क्रॉप जो है वो बैठ जाएगी, उसको इतना वाटर रिक्वायरमेंट है ही नहीं एट दैट टाइम पीरियड अगर नहीं है. तो फिर इसके लिए उनका इनिशिएटिव ये था कि लाइक वो सेंसर अटैच कर देंगे मोटर्स के साथ और वो सेंसर्स जो होंगे ओवर द इंटरनेट आपके पास मोबाइल एप्लीकेशन है. लाइक अगर एक फार्मर अपनी लैंड से दूर भी है तो वो उसको नोटिफाई कर देगा कि लाइक इतने टाइम पीरियड के लिए तुमने वाटरिंग दी, स्टार्ट कर दी, और एक अलार्म होगा, अलार्म बजेगा या वो ऑटोमेटिकली उसके स्विच को ऑफ कर देगा इन द एब्सेंस ऑफ दैट.
1: यानी कंप्लीट कंट्रोल उसके मोबाइल पे होगा.
3: हाँ जी, और ये एग्जांपल हम एज आईओटी बेस्ड सिस्टम में भी ले सकते हैं, लाइक प्रिसीजन एग्रीकल्चर में आ रहा है. लाइक टेक्नोलॉजी जो है वो यूज करते हुए हम वाटर की जो है वो मैनेजमेंट कर रहे हैं.
1: मिस, जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर में डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग मॉडल्स किस तरह इनको इन्हेंस कर रहे हैं?
3: देखिए मिस, आगे हमने जैसे डिस्कस किया कि हम जितनी भी टेक्नोलॉजीज को यूज कर रहे हैं अल्टीमेटली उससे हमारे पास जो जनरेशन हो रही है वो है डेटा जनरेट हो रहा है लार्ज अमाउंट में. फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉइल की बात करूं तो अगर मैं ड्रोन्स के थ्रू उसकी पिक्चर्स ले रही हूं और बाद में मैंने उसके ऊपर एनालिसिस करना, तो एनालिसिस कोई ना कोई डेटा मुझे प्रोवाइड करेगा इन द फॉर्म ऑफ इमेजेस के ऊपर मैं प्रोसेसिंग कर सकती हूं, इन द फॉर्म ऑफ फिगर्स लाइक ये नंबर्स हैं. तो उस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा हैंडलिंग के लिए मैं क्या करूंगी कि मैं उसको कंप्यूटेशनली अपने पास सेव करूं और उसके ऊपर कोई ना कोई एनालिसिस करूं. ठीक है, अगर मैं इमेजरी की बात करूं तो हमारे पास जीआईएस है, ठीक है, जो कि जियोग्राफिक यानी कि इमेजरी की जितनी प्रोसेसिंग है वो जीआईएस हैंडल करेगा. लेकिन अगर हम मैंने डेटा की बात करनी है या डेटा एनालिसिस की या विजुअलाइजेशन की बात करनी है, तो वहां पे मेरे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग के जो मॉडल्स हैं, कंप्यूटेशनल मॉडल्स. वी ऑलरेडी नो के डीप लर्निंग मॉडल्स आर डेटा हंग्री, तो एग्रीकल्चर फील्ड से हमारे पास बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा जनरेट हो रहा है इफ वी हैव एक्सेस टू दैट. क्योंकि अगर फार्मर्स तक अगर हम पहुंचेंगे नहीं या रियल टाइम सिनेरियो में हम जाके डेटा कलेक्शन करेंगे नहीं, तो हमारे पास डेटा नहीं आएगा. अब जब हम अगर फार्मर्स की एसोसिएशन है किसी गवर्नमेंट अथॉरिटीज के साथ, तो वहां से हम डेटा जनरेट लार्ज अमाउंट में होगा. अब हमने उस डेटा को सेव करना है, लेकिन सेव करना इज नॉट ओनली पर्पज जबकि वो हमें कोई आउटपुट ही नहीं दे रहा या मीनिंगफुल एनालिसिस ही नहीं दे रहा. ठीक है, तो डीप लर्निंग मॉडल्स कम टू द रेस्क्यू कि हम उस डेटा को यूज करते हुए, फॉर एग्जांपल अगर मैंने सॉइल का डेटा लिया है, ठीक है, तो इमेजरी की फॉर्म में जो डेटा होगा उसके फैक्टर होंगे कि मैं स्पेशली डेटा को कैसे देखूं, क्योंकि वो इमेज की फॉर्म में आया है तो मेरे पास रेजोल्यूशन है. ठीक है, और अगर इस फैक्ट्स फिगर्स की फॉर्म में आया लाइक नंबर्स की फॉर्म में मेरे पास डेटा है, तो मैं उसको कैसे यूटिलाइज कर सकती हूं कि मैं अपना एक कंप्यूटेशनल, अगर मैं सॉइल की एग्जांपल लूं, कंप्यूटेशनल मॉडल बना लूंगी कि लाइक सॉइल की मैंने अगर स्टार्ट ऑफ द सीजन में मैंने सॉइल की पिक्चर्स कलेक्ट की और मैंने उसके न्यूट्रिएंट्स कैलकुलेट किए कि पीएच का इतना था, कार्बन इतनी थी या मेरे पास पोटेशियम की अमाउंट इतनी थी यूजिंग इमेज एनालिसिस, तो मैं उस डेटा को सेव करूंगी और आई कैन मेक द प्रिडिक्शन मॉडल. ठीक है, कि नेक्स्ट टाइम जब फार्मर जो है या कहीं किसी और लैंड पे भी, इसकी ब्यूटी क्या है कंप्यूटेशनल मॉडल्स की कि मैंने एक जगह से लाइक मैंने अपना सैंपल कलेक्ट किया और मैंने उसको मॉडल को ट्रेन करा दिया. अब मैं किसी न्यू जगह पे भी फार्मिंग करने जा रही हूँ लाइक मैं न्यू स्पेस की जो पिक्चर लूंगी लैंड की, देन वो मेरा मॉडल कैलकुलेट करके बता देगा कि लाइक इसकी पीएच इतनी है, इसके न्यूट्रिएंट्स इतने हैं, यस यू कैन गो फॉर दिस क्रॉप. यानी कि
1: रीयूजेबिलिटी उसकी बढ़ गई.
3: जी, इस तरह हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं यानी कि मॉडल्स को, और ये लाइक एफिशिएंट इस तरह बना रहे हैं कि हम डेटा को कलेक्ट करके छोड़ नहीं रहे, हम उसको एफिशिएंट वे में यूज कर रहे हैं. और इट कैन ऑल्सो हेल्प फिर जो हमारे पास फैक्ट्स एंड फिगर्स आएंगे वो हमारे पास पॉलिसी मेकर्स को हेल्प करेंगे लाइक लार्जर लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे, कि लाइक जैसे हमारे पास क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज पाकिस्तान है जो कि ये कैलकुलेट करती हैं कि हमारे पास जो है डेटा जो है लाइक कितनी क्रॉप प्रोड्यूस हुई, राइस की कितनी भी टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हैं जिस एरियाज में भी हैं वो कितनी प्रोडक्शन हुई है, कितने एकड़ जमीन से कितने टन्स वो हमारी क्रॉप जनरेट हुई है और वो हम एक्सपोर्ट करेंगे. तो फैक्ट्स एंड फिगर्स शुड बी रिलायबल एंड वैलिडेटेड इनफ. तो वो डेटा हमें लार्ज लेवल पे, इकोनॉमिकल लेवल पे भी हेल्प करेगा और वो फार्मर्स को भी हेल्प करेगा लाइक नेक्स्ट टाइम जब वो अपनी क्रॉप ग्रो करेंगे तो उनको कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जो के इम्प्लॉय करनी चाहिए अपनी क्रॉप हेल्थ को बेहतर करने के लिए, अपने जो क्रॉप साइकिल है या क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस करने के लिए, और कौन सी वो स्टेप्स हैं, वो बातें हैं या नेग्लिजेंसेस हैं जो उनको नहीं करने चाहिए. तो ये सारा होगा अगर डेटा हमारे पास एक सेंट्रलाइज फॉर्म में होगा या अगर हमने उसका एक कंप्यूटेशनल मॉडल बना लिया यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डीप लर्निंग, तो वो इसमें बहुत हेल्प करेगा.
1: लिसनर्स, वक्त हुआ चाहता है एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का. हमारे साथ रहिए, सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया.

0: सुन रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब FM 92.6 UCB की दुनिया।
1: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं FM 92.6 UCP की दुनिया। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे प्रिसीजन एग्रीकल्चर की। हमारे साथ मौजूद है मिस राबिया महमूद, इनसे मजीद सवालात करते हैं। जी मिस, आप बताइएगा कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी में किस तरह अपना रोल अदा कर रही है?
2: जी मिस, जैसे हमने काफ़ी फैक्टर्स देखे हैं। पहले हमने फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्रॉप साइकिल या प्रोडक्शन साइकिल, हमारे पास सीड्स हैं, सीड्स की क्वालिटी को एसेस कर सकते हैं हम, सॉइल की हेल्थ को या सॉइल न्यूट्रिएंट्स को। हमने उसका यूजेज देखा कि लाइक कैसे हम डिफरेंट टेक्नोलॉजीज या एप्लीकेशंस का यूज़ करते हुए उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फिर हमने यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स देखा। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम राइट टाइम पे एंड अकॉर्डिंग टू द राइट रिसोर्सेज अगर हम फार्मर्स को प्रोवाइड करें या उनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस हो, रिसोर्सेज का एक्सेस हो, तो हम ये सारे फैक्टर्स इम्प्लीमेंट करते हुए अपने इन्वायरमेंट को भी सस्टेन कर सकते हैं। लाइक फर्टिलाइजर का एक्सेस यूज भी हमारी प्रोडक्शन के लिए ठीक नहीं, अल्टीमेटली फार्मर अफेक्ट होगा, अल्टीमेटली हमारी इकोनॉमिकल ग्रोथ्स जो है या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, जैसे मैंने बताया कि एग्रीकल्चर ओवरऑल GDP को अफेक्ट करता है, इस तरह अफेक्ट नहीं होगा और वो इन्वायरमेंट सस्टेन रहेगा। और दूसरी बात, जैसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर है और हम डिजिटल वर्ल्ड में हैं, हर कंट्री जो है इसके ऊपर वर्क कर रही है। लाइक अगर हम चाइना के एग्जाम्पल लें तो वो फुली 100% जो है वो ऑटोमेटेड है। लाइक हम तो हर स्टेप की बात करें, उनके हर स्टेप में जो मशीनरी भी यूज हो रही है वो सारी ऑटोमेटेड है। लाइक हार्वेस्टिंग ऑटोमेटेड है, मशीन्स कर रही है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है, ऑटोमेशन की तरफ मूव कर रही है। लेकिन हमारे लेवल पे हम लाइक इनिशिएटिव ले सकते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया फर्टिलाइजर्स के लिए एप्लीकेशन हैं, सॉइल मॉनिटरिंग या हेल्थ के लिए एप्लीकेशन हैं, या रिमोट सेंसिंग के थ्रू हम लार्ज एरिया पे जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसकी एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इन्वायरमेंट को हम इस तरह सस्टेन कर सकते हैं। लाइक इन सारे पॉइंट्स और फैक्टर्स को देखते हुए इसके लिए हमारे पास लार्ज लेवल से हायरार्किकल लाइक लोअर लेवल फार्मर्स तक इंफॉर्मेशन, फिर अगर उनके पास इंफॉर्मेशन है तो उनके पास टेक्नोलॉजी का यूज। लाइक 5 years बैक गवर्नमेंट ने, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था, उन्होंने फार्मर्स को मोबाइल फोन्स दिए थे जिसमें कि दैट वाज स्पेसिफिकली फॉर एप्लीकेशंस लाइक उनकी क्रॉप्स के हेल्थ सीजन, पेस्टिसाइड्स का यूज, किस तरह के पेस्ट अटैक कर सकते हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन थी। तो कुछ फार्मर्स जो थे वो उन्होंने उसको स्पेसिफिकली अपने क्रॉप के लिए ही उसको यूज किया, कुछ फार्मर्स ने जो है वो मोबाइल फोन लेकर एप्लीकेशंस डिलीट करके लाइक उसको पर्सनल यूजेस के लिए रखा। तो अगर आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं तो आप उसका राइट यूज करें। सेकेंडली, जब आपके पास टेक्नोलॉजी है, आप उसका यूज कर रहे हैं, तो उससे जनरेट होने वाला, फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या जो भी ऑफिशियल्स हैं उनको चाहिए कि जो डेटा जनरेट हो रहा है या आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं उसको सेव किया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जितने भी हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं वो डायरेक्टली लिंक्ड हैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से या एसोसिएशन से, तो जितनी भी रिसर्च साइड पे इसके ऊपर हो रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अगर कम है तो दैट इज ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन फार्मर्स और वो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज, या गवर्नमेंट के पास डेटा है भी तो उस वो एक सेंट्रलाइज नहीं है। लाइक अगर मैं बात करूँ क्रॉप रिपोर्टिंग सर्विसेज की, तो हमारे पास सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है कि इतना अप्रोक्सीमेटली जनरेट हुआ प्रोडक्शन। लाइक और अगर मैं इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जैसे ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, इसका डेटा हमें रिक्वायर होगा। जैसे हमने आगे डीप लर्निंग मॉडल्स की बात की कि हमें उसमें डेटा चाहिए, तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है या सॉइल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर हमें रिसर्च साइड के लिए अगर हमें डेटा चाहिए तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को चाहिए, जैसे कि दूसरे कंट्रीज इंडिया है, चाइना है, देयर ऑल वेबसाइट्स आर ओपन, कोई भी लाइक ले मैन भी वहां से जाके अपना डेटा डाउनलोड कर सकता है। एज कम्पेयर टू अवर अथॉरिटीज, वेबसाइट्स डू एग्जिस्ट देयर, लेकिन उनके ऊपर जो डेटा है उसकी ऑथेंटिसिटी वैलिडिटी बहुत इंपॉर्टेंट है,
1: या अपडेटेड भी नहीं होगा वो
2: अपडेटेड, और उसका राइट यूज या एक्सेस टू द यूजर्स। जैसे फार्मर्स को अगर एक्सेस नहीं है टेक्नोलॉजी यूज करने की, या अगर वो टेक्नोलॉजी यूज करें तो कहीं हम उसको डॉक्यूमेंट नहीं करें उस फैक्ट्स एंड फिगर्स को। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं, अगर हम इसका राइटली यूज करें या राइट एक्सेस टू द रिसोर्सेज हो तो हम अपने एनवायरमेंट को सस्टेन कर सकते हैं, क्रॉप ग्रोथ जो है वो इंक्रीज हो सकती है, और इसी तरह अगर डेटा डॉक्यूमेंटेड होगा उसके ऊपर हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो पॉलिसी मेकर्स कैन मेक डिसीजन फॉर फ्यूचर प्रेडिक्शंस और प्रीएम्प्टिव मेजर्स कर सकते हैं किसी भी नुकसान से बचने के लिए।
1: बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि फार्मर्स को प्रिसीजन एग्रीकल्चर्स की तरफ जाना चाहिए, तो इसको अडॉप्ट करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं उन्हें?
2: फर्स्ट और फॉरमोस्ट चैलेंज यही हो सकता है कि अगर एक फार्मर है, उसने अपनी क्रॉप को ग्रो करना है, ठीक है, तो वो मोस्ट नेसेसरी यूज ऑफ टेक्नोलॉजी करेगा. उसको ट्रैक्टर चाहिए होगा, ठीक है, बाकी जो है मैन मेड हेल्प के थ्रू, अगर सोइंग हो रही है तो ट्रेडिशनल वे में हो रही है, कोई मशीनरी नहीं है, लेबर पर्सन ही जो है सीड्स को सो कर रहे हैं. तो अगर गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव ले, अगर मशीनरी है तो जैसे अभी भी होता है मोस्टली जिनका वाटर मैनेजमेंट का सिस्टम अपना नहीं है, दे बोरो फ्रॉम सम अदर अथॉरिटी, वो उनको उतने टाइम पीरियड के लिए वाटर की एक्सेस देते हैं कि आप अपनी लैंड के लिए कर लें. इसी तरह हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम मशीनरी ले रहे हैं फॉर सम टाइम पीरियड, जैसे कि हमारे गवर्नमेंट के काफी इनिशिएटिव हैं हेल्थ के हवाले से या बाकी भी एजुकेशन के हवाले से, उनको लोन्स प्रोवाइड किए जाते हैं. अभी भी जैसे लोन प्रोवाइड किया जा रहा है यूथ को कि वो अपना कोई बिजनेस इनिशिएटिव करें या उनको रिटर्न करना इतने टाइम पीरियड में, तो ये इनिशिएटिव ले सकते हैं. फिर उनको एजुकेट करना चाहिए कि अगर हम उनको मशीनरी प्रोवाइड कर रहे हैं तो फिर वो उसका राइट यूज करें या टाइमली जो है वो रिटर्न करें. तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो फार्मर्स की एक्सेस नहीं है, और अगर तो रिसोर्सेज ही नहीं है तो फिर ये तो एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो सकती, बट वो फार्म्स, वो लैंड्स जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हैं या गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स के साथ कनेक्टेड हैं, वहां पे हम इसकी इम्प्लीकेशन जो है वो जरूर कर सकते हैं.
1: जी मिस, हमने अभी बहुत तफसील से प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हर पहलू पे गौर किया. मैं चाहती हूँ कि आप हमारे सुनने वालों को बताएं कि आने वाले वक्त में प्रिसीजन एग्रीकल्चर हमारी फार्मिंग इंडस्ट्री को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है.
2: जी मैम, इसमें तो है, अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखें कि हमारे पास कितनी ऑर्गेनाइजेशन है या कितने इंस्टीट्यूट्स हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर है या मोस्टली स्पेसिफिक जैसे वीट ग्रोथ के लिए, फैसलाबाद को एक माना जाता है कि वीट प्रोडक्शन सबसे ज्यादा पंजाब में उस एरिया से, और एग्रीकल्चर रिसर्च यूनिवर्सिटी है उसमें जो सेंटर है वो US एड फंडिंग से बनाया गया है. तो वहां पे जो रिसर्च हो रही है दैट इज एसोसिएटेड विद डेटा ड्रिवन थिंग्स, के वो सब कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और वो टेक्नोलॉजी का राइट यूज भी कर रहे हैं और रिजल्ट्स भी डॉक्यूमेंट कर रहे हैं. तो डिपेंड करता है कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर हेल्प किस तरह करेगी और कितने लेवल पे करेगी या किस स्कोप पे करेगी. तो सबसे पहले हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज होनी चाहिए, ठीक है. सेकेंडली फिर अगर हमारे पास रिसोर्सेज हैं तो हमने रिसोर्सेज प्रोवाइड भी किए हैं टू द राइट एक्सेस, ठीक है, फार्मर्स को हमने प्रोवाइड किए हैं, फिर हम बिग लेवल पर जा सकते हैं. बट इन सिचुएशन के अगर गवर्नमेंट हमें जो है वो प्रोवाइड करती है इतनी फैसिलिटीज या जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं उसके लिए वो स्पेसिफिक एग्रीकल्चर के लिए फंड निकलता है या जिस तरह के भी प्रोजेक्ट्स हैं या इंटरनेशनली फंडेड प्रोजेक्ट्स हैं उनको रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन की तरफ लेके आया जाए. और डेटा सेंट्रिक अप्रोचेज होनी चाहिए कि जो जितना भी डेटा हमारे पास जनरेट हो रहा है वो हमारे पास गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है, और उसके बाद रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनिशिएटिव्स होनी चाहिए फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड्स. और एक ये चीज़ है कि रिसर्च इंस्टीट्यूट्स अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं, दे आर डूइंग द रिसर्च इंडिविजुअली, ठीक है, और वो उसको बड़ी हद तक रिसर्च पेपर्स में पब्लिश कर देंगे. तो कोलैबोरेशंस होनी चाहिए, गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट का लिंक होना चाहिए दीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ, वो रिसर्च स्टूडेंट्स को डेटा प्रोवाइड करें, क्योंकि अगर उनके पास रियल टाइम डेटा नहीं होगा तो वो सिमुलेटेड डेटा पे इतनी ऑथेंटिसिटी नहीं हो सकती कि मैं सिमुलेशन कर रही हूँ स्पेसिफिकली फॉर क्रॉप के हवाले से या एग्रीकल्चर फील्ड के हवाले से, इसलिए कि हमें उसमें रियल टाइम डेटा चाहिए, हम सिमुलेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है. तो इसलिए फिर रिसर्च प्रोजेक्ट्स के इनिशिएटिव्स होने चाहिए या कोलैबोरेशन होनी चाहिए बिटवीन द इंस्टीट्यूट्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड गवर्नमेंट.
1: प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन के अभी मौका देना चाहिए.
2: जी
1: लिसनर्स, आज के प्रोग्राम के इख्तितामी लम्हात आ चुके हैं. उम्मीद करते हैं कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर के हवाले से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. इसके साथ ही हम अपनी ऑनरेबल गेस्ट मिस राबिया का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया.
2: थैंक यू मिस फॉर योर इन्विटेशन एज वेल, मुझे बहुत अच्छा लगा इस टॉक पे आकर. थैंक यू सो मच.
1: लिसनर्स, आपसे मुलाकात होगी अगले हफ्ते इसी टाइम इसी प्रोग्राम में. सुनते रहें FM 92.6 UCP की दुनिया. अल्लाह हाफिज.
3: सलाम सबको जो मुल्क की पहचान बने, सलाम सबको जो मिट्टी की मान बने, जैसे सब्ज परचम में

0: नशा न परेशानियां खत्म करता है न इसका सरूर हमेशा रहता है। ये एक लम्हे की कमजोरी है जो सारी जिंदगी का रोग बन जाती है। बातला इल्मी जहालत और हमाकत से शुरू होती है और सारे खानदान को तबाह कर देती है। ऐसी कोई खाने पीने लगाने या सरूर दिलवाने वाली अशिया का इस्तेमाल न करें जिसमें नशा हो। वालिदैन, असातिज़ा और दोस्त बच्चों पर नजर रखें। हंसी मजाक में की गई हरकत आपकी सांसें भी खत्म कर सकती है। नशे से इनकार, जिंदगी से प्यार। मंशियात की सरगर्मियों की रोकथाम के लिए हमारी हेल्पलाइन पर राबिता करें।
1: ये आवाज है लाहौर की, ये आवाज है यूसीपी की, तो सुनते रहिए FM 92.6 UCP की दुनिया।

0: लोगे।
1: बच्चों के साथ जिंसी तशद्दुद अक्सर हमारे सामने हो रहा होता है, डरे नहीं और चीख के कहें।
2: खबरदार, छूना मना है।
3: मजीद तफसीलात के लिए राब्ता कीजिए 1099 पर।

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Union.

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। ये खूबसूरत सी आवाज़ सुन रहे थे आप गुलाम अली की, और जितनी खूबसूरत आवाज़ थी यकीन मानिए उतने ही खूबसूरत अशआर थे। और मुझे ये बात बेहद पसंद आती है और दिल को छू जाती है कि आप जब हम इस तरह का म्यूज़िक सुनते हैं, हम गज़लें सुनते हैं या हम 60s, 70s, 80s का म्यूज़िक सुनते हैं, तो उनमें वर्डिंग बहुत पावरफुल है। जो अल्फाज हैं वो बहुत ही आपके लिए ताकतवर हैं, और यही मेरे ख्याल में एक अच्छे सॉन्ग की भी पहचान होती है कि वो इतनी सदियां गुजर जाने के बाद भी हमारे दिलों में महफूज है। अभी कुछ दिन पहले मैं गुलाम अली साहब का इंटरव्यू सुन रही थी, तो यकीन मानिए उस इंटरव्यू में वो काफ़ी साल बाद गा रहे थे, और उनको सुन के मैं अपने रूम में थी और टीवी बाहर लगा हुआ था, तो जब मैंने उनकी आवाज़ सुनी तो आई वॉज जस्ट शॉक्ड। मुझे लगा क्योंकि म्यूज़िक नहीं था उसमें, तो मैं एकदम से भाग के देखने गई तो वो गा रहे थे। तो यकीन मानिए इतना मुझे अच्छा लगा, और मैं बस उनको वहाँ पे सुनती रही क्योंकि उनकी आवाज़ में वो चाशनी, वो जिसे कहते हैं ना कि वो खुशकुन आवाज़, अभी तक बिल्कुल वैसी की वैसी है। उन्होंने ज़िंदगी दे और बहुत ही खूबसूरत गाते हैं, और यकीन मानिए मेरी एकदम से सुन के मैं बाहर चली क्योंकि मुझे इतना अच्छा उनकी आवाज़ ने अट्रैक्ट किया था, एक तरह से मुझे उनकी आवाज़ ने जकड़ लिया था। तो यही एक बड़े फ़नकार की पहचान होती है, एक बड़े गुलकार की पहचान होती है। तो जनाब, बैक टू आवर टॉपिक, टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन बिहेवियर। आज हम बात कर रहे हैं मोटिवेशन की और रवैयों की, ये किस तरह से हम खुद को किसी काम के लिए आमादा कर सकते हैं, किसी को पंप कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मैं आपको थोड़ा बताती चलूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप तारीफ़ कर दो ना तो वो बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, उन्हें बहुत एक चीज़ मिल जाती है अंदर से कि हाँ ठीक है मिल गया मुझे। अब मेरे जैसे लोगों को वाकई, मुझे पॉजिटिव चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। व्हेन आई सी समथिंग, जब मुझे कुछ देखती हूँ कि कुछ पॉजिटिव हो रहा है, कुछ मुस्बत हो रहा, तो मुझे वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत कशिश दिलाती है वो चीज़। तो इसी तरह से कुछ लोग होते हैं जिन्हें बिठा के समझाना पड़ता है, उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ ये करो वो करो ये करो वो करो। और मेरे ख्याल से अगर हम चंद लम्हे निकाल के किसी को दो लफ्ज़ बता देंगे, किसी को दो लफ्ज़ कह देंगे, तो इज्जत नहीं घट जाएगी, हमारे टैलेंट में जो हम में है उसमें कमी नहीं आ जाएगी, हमारे इल्म में कमी नहीं आ जाएगी। मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो घबराते हैं दूसरों को बताने से, दूसरों को सिखाने से। तो जनाब, बताने से सिखाने से जो आपका इल्म है वो ज़्यादा ही होता है। तो इस चीज़ को भी ज़रा मलहूसे खातिर रखिएगा, ज़ेरे गौर रखिएगा कि हम दूसरों को किस तरह से कुछ करने के लिए आमादा कर सकते हैं। अब जैसे कि एक इंसान है, उसमें बहुत कुछ करने का जज्बा है, उसके अंदर बहुत सारी सलाहियतें मौजूद हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा, लेकिन उसे एक क्लिक चाहिए, एक क्लिक चाहिए। शायद वो क्लिक आप ही हो, शायद वो आप ही हो जिसका हाथ सिर्फ चंद लम्हे के लिए पकड़ के वो थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, और शायद वो चंद लम्हों का जो साथ है वो उसकी ज़िंदगी बना जाए। क्या आपको पता है? नहीं, ये मुझे नहीं पता, ये आपको नहीं पता, लेकिन ये ज़िंदगी है। आज हम किसी का सहारा बनेंगे, आज हम किसी को कुछ कहेंगे, आज हम किसी को कुछ अल्फाज ही कह देंगे, तारीफ़ी अल्फाज कह देंगे, तारीफ़ी कलमात कह देंगे। इसके अलावा अगर किसी को हम उदास देख रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहा कोई इंसान, और क्यों नहीं कर पा रहा, अब ये आपको नहीं पता, अब वो इंसान खुद कंफ्यूज बैठा हुआ है कि मैं क्या करूँ, मैं नहीं कर पा रहा, वो क्यों नहीं कर पा रहा। तो ये जो करना और ना करने के दरमियान जो जगह होती है, एक खाली जगह होती है, इसको आप पुर कर सकते हो खुद से, उन बातों से जो आपके अंदर है, आप कहना चाहते हो तो कहिए ना, शायद आपकी ज़ुबान के खुलने का इंतज़ार कुछ चीज़ें कर रही हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ ऐसी वजह है जो आपको मजबूर कर रही है कि आप कुछ बोलिए। तो आज बोलिए,
किसी को अगर आपकी चाहिए, आपको लगता है कि किसी को आपकी ज़रूरत है, जनाब कीजिए। और इस चीज़ को छोड़ दीजिए कि मुझे इसका बदला मिलेगा या नहीं बदला मिलेगा। बदले नहीं मिलते, बदले के लिए काम ही मत कीजिए ना। किसको आज तक बदला मिला, वो ऊपर वाले पे छोड़ते हैं। और ये बात बरहक है, हम भूल जाते हैं, मैं और आप भूल जाएंगे, किसी का एहसान भूल जाएंगे, किसी के अल्फाज भूल जाएंगे, मगर वो नहीं भूलता। इसलिए खुद पे एतबार करके दूसरों को भी एतबार दिलाएं कि उनमें कुछ खास है, वो कुछ कर सकते हैं। यही एक तरीका है कि हम एक दूसरे का सहारा बन सकते हैं। हम बहुत मसरूफ़ हैं आजकल एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे के बारे में कुछ कुछ कहने की। अब ये कुछ कुछ में क्या होता, वह ये हम सभी जानते हैं। तो एक बहुत ही खूबसूरत मुझे यहाँ पे अशार याद आ रहे थे। अबा बुले शाह कहते हैं, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, ढेंदा जो कुछ ढा दे, एक बंदे दा दिल ना ढावी, एक बंदे दा दिल ना ढावी, रब दिला विच रहंदा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी अगली गज़ल की तरफ, जो मेहदी हसन यानी शहनशाह गज़ल की खूबसूरत सी आवाज़ में है।

शोला था चल बुझा हूँ, मुझे सदाएं ना दो, मैं कब का जा चुका हूँ। क्या खूबसूरत अल्फाज हैं, और जब मैं इतने खूबसूरत अल्फाज सुनती हूँ तो मैं काबू में नहीं रहती ना, मैं खो जाती हूँ उन चीज़ों में, इन अल्फाजों में, आवाज़ में, क्योंकि आवाज़ पे तो शहनशाह गज़ल की थी, जिन्हें हम गज़ल के शहनशाह कहते हैं जनाब, जब उनकी आवाज़ हो और फिर इतने खूबसूरत अल्फाज हों तो क्या ही कहने। तो हम इस ट्रैक पे, इस खूबसूरत सी गज़ल पे जाने से पहले बात कर रहे थे अपने टॉपिक्स के बारे में, और मैं आपको कह रही थी कि हम लोगों को आमादा कर सकते हैं कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिनसे वाकई उनकी जो अंदर सलाहियतें हैं, जो छुपी हुई हैं, वो उजागर हो सकें। अच्छा, यहाँ पे मुझे एक बात याद आई, और वो बात कुछ इस तरह से है कि जैसे मौसीकी होती है ना, जो मौसीकी होती है ये भी तो जुबां होती है ना, जो छुपी हुई होती है और हम उसको जुबां दे देते हैं। अरे समझ नहीं आया, चले मैं समझाती हूँ। मौसीकी जो होती है ना, ये अल्फाज होते हैं, ऐसे अल्फाज जो हमारे अंदर कहीं दब जाते हैं, कहीं छुप जाते हैं, हम कह नहीं पाते। खामोशी, खामोशी की जुबान होती है मौसीकी। शायर जो लिखता है वो क्यों लिखता है, वो कहना चाहता है जो वो सबसे खुले में नहीं कह सकता, जब सबसे खुला मखुला वो नहीं कह सकता, वो कहता है अपने लफ्ज़ों के ज़रिए। और फिर वो लफ्ज़ जब एक मौसीकार के पास आते हैं ना, तो वो मौसीकार उन लफ्ज़ों की, जिस तरह से उन लफ्ज़ों की शिद्दत है, उनकी अदायगी है, उनके लिहाज से वो मौसीकी बनाता। अब यहाँ पे एक बात काबिले गौर है, जो मौसीकार होता है कहते हैं कि वो अपनी मौसीकी को जो तरतीब देता है खामोशी पे देता है। तो इसलिए ज़रा देखिए, हमारे छुपे हुए अल्फाज जो हमारे दिल के अंदर थे वो बाहर आए शायरी के ज़रिए, चाहे किसी और ने उन्हें लिखा, लेकिन हुआ ये कि बिलाखिर वो बन के एक खूबसूरत पैरहन में ढल के वो आपके सामने आ गए, एक खूबसूरत सी गज़ल की सूरत में, एक खूबसूरत से ट्रैक की सूरत में। तो जनाब, इसी तरह से हमारे दिल के अंदर भी सौ तरह की बातें होती हैं, सौ तरह के वसवसे, सौ तरह के ख्यालात, ये करूं, वो करूं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आता। पता है आसान सा हल क्या है? मैं एक बात कहती हूँ कि जब आपको थोड़ी सी मुश्किल दरपेश आए या किसी मुश्किल में आप फंस जाओ, तो कोशिश करो कि उस मुश्किल से तो निकलो ही, लेकिन अपने आप को आप थोड़ी सी उस मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल में डाल के देखो। अरे लोग कहेंगे क्या बात कर रही है ये लड़की, अरे जनाब बात तो मैं सही कर रही हूँ, समझने की ज़रूरत है। समझना यहाँ पे ये है कि हम पता है क्या करते हैं, अब जैसे कि मुश्किल आए, उसको मैंने हल कर दिया, ठीक है, दैट्स इट, ख़त्म हो गया। लेकिन असल बात ये है कि मुश्किल आई है, मुझे उसको सॉल्व करना है, उसको हल करना है, जनाब उसके साथ साथ मुझे अपने आप को भी आजमाना है, अपने अंदर की कुव्वत को भी आजमाना है कि मैं कितना बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो ज़रा डाल के देखिए। और एक बात, मायूस नहीं होना, मायूसी तो जनाब है ही गुना, वो तो होना ही नहीं है ना। जैसे कि इशफाक अहमद साहब ने एक बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात कही थी, वैसे ये बात इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हम अक्सर और बेशतर ये चीज़ें करते रहते हैं। मैं भी अगर जाते जाते मैंने किसी को देख लिया, उसकी जूती मैच नहीं हो रही थी उसके कपड़ों के साथ, या लिपस्टिक का कलर जो था वो काफ़ी ऐसा था जो मुझे पसंद नहीं आया, मैंने एक बात उस पर कह दी, अरे देखो तो सही उसने क्या लगाई हुई है, देखो तो सही उसने पहना क्या हुआ। आपको पता है ये अल्फाज कहने में बहुत छोटे हैं, मामूली से हैं, दो लफ्ज़ों पे मुहित है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इनकी तकलीफ कितनी ज़्यादा है? मैंने तो कह दिया, मैंने किसी दूसरे में ऐब निकाल दिया, मैंने उसको जज कर लिया, लेकिन क्या आपने कभी खुद में ऐब निकाले हैं? चलिए अब ऐसा करते हैं,
किसी दूसरे को जाते हुए देखा आपने उसमें कोई कमी देखी, तो कोशिश कीजिए कि उस पर बात करने से पहले उस कमी को अपने अंदर तलाश करें। अगर आप में वो कमी नहीं है, फिर भी उस कमी के बारे में, उस इंसान के बारे में बात मत कीजिए। आपको जेब नहीं देता, किसी को जेब नहीं देता, क्योंकि हम तो अशरफुल मखलूकात है जनाब। हम में से सब मुकम्मल है, नामुकम्मल कोई नहीं है। हमें उस ज़ात ने बनाया है, और अशरफुल मखलूकात भी हमें असली कहा गया है कि हमारे अंदर एहसास है, हमारे अंदर मोहब्बत है, नफ़रत है, हर चीज़ है। तो बात हो रही थी मोटिवेशन की और हम कहाँ निकल गए। तो ये बात मैंने इसलिए की कि हम जब हमें कुछ करने की ज़रूरत होती है या हमें कुछ चीज़ चाहिए होती है, कुछ हौसला चाहिए होता है, तो वो हम कभी कभार कोई दूसरा आके हमें नहीं दे रहा होता, कोई तीसरा आके हमें नहीं दे रहा होता। हाँ, चंद लम्हों के लिए लोग आते हैं, कुछ लोग आते हैं आपको हौसला देने, कुछ लोग आते हैं सबक देने, कुछ लोग आते हैं कि वो आपको सिखा सके कि मोहब्बत कैसे करते हैं, कुछ लोग आते हैं कि वो आपको सिखा सकें कि नफ़रत कैसे करते हैं, कुछ लोग इसलिए आते हैं कि वो आपको ये सिखाएं किस पे एतबार करना है, किस पे एतबार नहीं करना। कुछ लोग ये सिखाने आते हैं कि झूठ नहीं बोलना, जो कि हम अक्सर बोलते हैं। तो जनाब, लोगों का आना और जाना यूं ही लगा रहेगा, और हम और आप, यानी मेरी ज़ात और आपकी ज़ात यही रहेगी हमेशा आपके साथ। अगर आप कुछ करना चाहते हैं ना, तो अगर पूरी दुनिया पे आपके ख़िलाफ़ है लेकिन आप जानते हैं कि आप कर सकते हो, तो आप कर सकते हो। इसलिए अपनी हिम्मत खुद बनिए और अपने रवैये को हमेशा मुस्बत रखिए, कि मुस्बत रवैया आपको बहुत सी अच्छी चीज़ों की तरफ ले जाता है। तो ऐसा करते हैं कि अब हम एक ऐसी आवाज़ जो मेरे दिल के बहुत करीब है, वो हम सबकी दिलों के बहुत करीब है, आपदा परवीन।

कभी भी असुविधा मत होइए कि हमने कुछ किया नहीं, हम कुछ कर नहीं सकते। अच्छा, ये जब हम कहते हैं ना हम कुछ कर नहीं सकते, सोचा था कुछ हुआ नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जनाब दिमाग है आपके पास, हाथ है, आंखें हैं, सब कुछ है, क्यों नहीं कर सकता? किस चीज़ से कमी है? जब कमी नहीं है तो फिर कर सकते हैं ना, इसलिए करते रहें जो आप चाहते हैं। वो एक बात है ना कि अपनी नज़र सितारों पे रखें, अपनी नज़र सितारों पे रखें, लेकिन अपने जो पाँव हैं उनको ज़मीन पे ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप कुछ करना चाहते हैं ना, और जब आप कुछ पा भी लेते हैं, जब आप अपने आप को कुछ अच्छा करने पे आमादा हो जाते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, उस मोटिवेशन के बाद आपने वो चीज़ पा भी ली, उसके बाद एक चीज़ हम सभी इंसानों में आ जाती है, गुरूर आ जाता है, तकब्बुर आ जाता है थोड़ा सा, उससे परहेज़ कीजिए। और जल्दी से सुनिए नूरजहाँ की खूबसूरत सी आवाज़ में अलका तरन्नुम की बहुत ही खुशगुन आवाज़।

तू मेरी जिंदगी है, खूबसूरत सा ट्रैक आप सुन रहे थे। तो जनाब, कहते हैं कि वक्त को हम संभाल नहीं सकते, उसको हम जकड़ नहीं सकते, और कभी कभार ये भी कहा जाता है कि हम किसी से उसका वक्त छीन लेते हैं। अरे, किसी से हम उसका वक्त कैसे छीन लेते हैं? जनाब, आप किसी से उसका वक्त उस वक्त छीनते हैं जब उसको, उस वक्त को आप मार देते हैं। अब उस वक्त को आप कैसे मारते हैं, चले मैं समझाती हूँ। आज आपने अपने दोस्त से झगड़ा कर लिया, उनसे लड़ाई कर ली। अब आपका दोस्त तो प्लान करके बैठा हुआ था कि जनाब, इन तीन चार छुट्टियों में हमने जाना है अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने, या आज शाम को मैंने अपने दोस्त के साथ खाना खाने जाना है। लेकिन आपने क्या किया? अरे, आपने तो उसका वक्त ही मार दिया। आपने तो उस वक्त में छुपी उसकी खुशी को ही मार दिया। तो जनाब, ये ज़रूर कोशिश कीजिएगा, किसी से उसका वक्त मत छीने, किसी का वक्त ना मारे। ये बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं और हम तवज्जो नहीं देते। हम कहते हैं अच्छा ठीक है, सही है। लेकिन जनाब, ये छोटी छोटी चीज़ें हमें बहुत ही बड़ी बड़ी चीज़ों की निशानदही कराती हैं। कुछ भी जो छोटा सी चीज़ हो जाती है, छोटे वाकयात हादसात होते हैं, ये किसी बड़ी शय का, किसी बड़े हादसे का पेश खैमा होते हैं। इसलिए कोशिश करें कि खुद से किसी को मत हर्ट करें, किसी का दिल ना दुखाएं। और आज जैसा कि हमने बात की कि वक्त, बहुत वक्त की बात मैंने यहाँ इसलिए की कि वक्त बिल्कुल हो चुका है ख़त्म, और ख़त्म हो ही जाता है, गुजरता ही जाता है। हम उसको कूसे में बंद तो नहीं कर सकते ना। तो हमारा वक्त, यानी दियारे गसल का वक्त जो है, वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम आपसे तो लेंगे इजाज़त, लेकिन इस बात के साथ कि अगर आपकी ज़िंदगी कोई बदल सकता है तो वो आप हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा कर सकता है तो वो आप खुद हैं। आप खुद को मोटिवेट भी कर सकते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बदल भी सकते हैं, आप अपने आप को खुश भी कर सकते हैं। अपने आप पे एतबार कीजिए, हर चीज़ का राज आप में छुपा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे, सुमहर सगीर को और दियार गज़ल की पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। हम चाहते हैं आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।

0: News. मौसीकी चाहे आंसुओं का सफर हो, चाहे रक्स की दुनिया, दिल बुने मोहब्बत के आशियाने हो या फरागत का जमाना.
1: एक्सप्लोरिंग पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अमारा माजिद और मेरे साथ है मेरे को होस्ट
2: आरजे फाद कुरैशी.
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिसनिंग टू FM 92.6 UCP की दुनिया. आई एम नूरुल हुदा विद द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट्स इन द इंग्लिश न्यूज बुलेटिन,
0: ओनली ऑन वन प्लेस.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।

0: एक नई सोच,
1: नई सोच,
2: एक नई पहचान,
3: पहचान,
0: एक नई लगन,
3: नई लगन।
2: यूसीबी में है हर फैकल्टी की अपनी एक अलग पहचान।
0: हम देते हैं पाकिस्तान को रोशन मुस्तकबिल तालिबे इल्म के किरदार से।
2: और जहां बातें हो मुस्तकबिल की, मालूमात की, और बहस व तकरार हो आने वाले वक्त की।
0: जहां बनते हो मुस्तकबिल के मामार और खेल के मैदान में पूरे पाकिस्तान में यूसीपी नंबर वन।
2: जब मिलती है लगन,
0: मेहनत,
2: कामयाबी और खुलूस,
0: तो बनती है
2: यूसीपी की दुनिया।
3: यूसीपी की दुनिया।
0: आप सुन रहे हैं FM 92.6।
2: सुनते रहिए।

Listen. Learn. Discover. With radio station FM 92.6 UCP ki duniya.

When you are off, turn on the radio and tune in FM 92.6 UCB Dunia.

ये आवाज है लाहौर की, लाहौर की। ये आवाज है यूसीपी की, यूसीपी की। तो सुनते रहिए FM 92.6 यूसीपी की दुनिया।

घर का फर्द था कोई मेहमान तो न था, थी जिनके दम से रोंगटे शहरों में जा बसे, वरना हमारा गांव

ये हुनर नहीं महारत है, ये सिर्फ रेडियो नहीं एक नई आवाज है जो बनाए आपके दिन को और खूबसूरत। आपकी दुनिया हमारी दुनिया, यूसीपी की दुनिया, FM 92.6।